0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का

कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सतारीचे बोल असोत
1: की मंजुळ बासरी,
0: शततारांची संतूर असो
1: की मंगल सनई,
0: लावण्यमयी लावणी असो की भजनी ठेका, आकाशवाणी अवश्य ऐका। आकाशवाणी आपल्याबरोबर प्रत्येक क्षणी।
1: आकाशवाणी।

0: लता मंगेशकर यांनी गायलेलं भारत आंबे यांचं गीत आपण ऐकलं. या गीताला संगीत होतं वसंत प्रभू यांचं. श्रोते हो, याबरोबरच सुगम संगीताचा कार्यक्रम आता समाप्त करीत आहोत. या कार्यक्रमाचा आनंद आपण घेतलात आकाशवाणीच्या सातारा केंद्रावरून. यानंतर ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात हे हिंदीतील बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत काही क्षणात.
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल. मुख्य समाचार. पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार. पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत. तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. राज्य में किसी को बहुमत नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया. ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल. और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है. पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है. वाम दल को 1 सीट मिली है. मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं. बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं. एक रिपोर्ट.
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा. लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है. पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा. उस सीट की गिनती 24 मई को होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है. जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी. संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता.
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के

0: गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
1: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
2: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले

0: 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयीय बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, यह आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का

0: ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर सुनेंगे बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये सुरीला सफर शुरू होता है अब जब हम एक इबारत के साथ आपके बीच में आते हैं, और वो इबारत, वो बात, वो जज्बात हमने जो आपके साथ साझा किए वह यह थे कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है। वैसे ही जीवन संगीत बहाव का नाम है, तो चलिए चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ विविध भारती को चाहने वाले, जब उसे सुबह से लेकर

आज तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो अपना बचपन जी लेते हैं। कई स्मृतियां और मन के भाव जाग उठते हैं जो स्वप्न की लीला में सो गए थे कहीं जाकर। यहीं से आरंभ होता है एक एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती जाती है और हौले हौले बढ़ती जाती है। पर्वत, नदी, वन, उपवन होते हुए यात्रा यात्रा गीत संगीत पर ही समाप्त हो जाती है। और आज हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले ही लिखकर भेज दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता हमसे ज्यादा होशियार हैं, समझदार हैं, और उनकी समझदारी को हम प्रणाम करते हैं। और उसी समझदारी के साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने बड़े अच्छे से उत्तर दिया है कि पर्वत, नदियां, वन, उपवन, प्रकृति का यह पावन नंदन वन, कल कल बहती नदियां गाएं, पहाड़ शीश झुकाएं, धरती का यह सजल रूप मन को भाए, हर पल पर्वत, नदियां, वन और उपवन। कितना बढ़िया लिखा है ना आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जो शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं वो निम्नलिखित हैं कि सरिता, सागर, संगीत, बहाव, सुबह, सांझ, रात्रि, स्वप्न, स्मृतियां, बचपन, प्रेम कहानी, यात्रा, हौले हौले, पर्वत, नदी, वन, उपवन, यही सांझ सवेरा, यही है वो सांझ सवेरा, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, बचपन की मोहब्बत को जाने। कितने सारे गीत इन्होंने बता दिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, यही वो सांझ हो सवेरा, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। पर बढ़िया, बहुत खूबसूरत बातें आप लिख रहे हैं और आपके जो भी जज्बात हैं उन्हें और पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि जब यह इबारत मैं लिख रही थी और सोच रही थी इसके बारे में, तो मैं मेरे बचपन को जी रही थी। मेरा वो बचपन जहाँ एक कमरा है, उस कमरे में एक झूला है, झूले के बगल में एक बड़ा खूबसूरत सा आईना लगा है और उसके बगल में रखा है एक रेडियो जिसके साथ मैं मेरी विविध भारती की यात्रा को तय कर रही हूँ। और ऐसी ही यात्रा आपने भी तय की होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, गीत संगीत की बात करूं तो मेरे बचपन से ही साथ है, नदिया की धारा की तरह कल कल करता हुआ संगीत के सुरों में कुछ ऐसा जादू है कि हर गीत के पीछे कोई ना कोई याद जुड़ी है। अब जब एक साथ 1 बजे सुरीला सफर शुरू होगा तो हर गीत के साथ एक याद, एक नहीं एक याद जीवंत तो हो उठेगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा बड़ा बड़ा प्यारा सा संदेश कि पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गया फिर गया वो भंवर, मैं नाव बह जाए किनारा, बड़ी तेज समय की है धारा। बहुत खूबसूरत सा लिखा है, तुझको चलना होगा। इसके बड़े प्यारे बोल लिखे हैं, प्रकृति एक स्वतंत्र सत्ता है, पर्वत, वन, उपवन, वाटिका, नदियां आपस में एक दूसरे के सहचर और परस्पर पूरक है। यहाँ प्रकृति उदात्त और दिव्य है। प्रकृति मानव के प्रेम और विरह के उद्दीपन रूप को परिभाषित करती है। एक ओर पर्वत ऊंचाई या गौरव का प्रतीक है तो वन पर्वतों का श्रृंगार करते हैं और नदियां एवं झरने इनको जीवन प्रदान करते हैं। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, वन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे, तेरे जहां सुरभि मनमानी, नानी की एक कहानी याद आ गई। उपवन से कविता की ये लाइन याद आ गई। बहुत बढ़िया कविता है, बहुत सुंदर यादें हैं आपकी। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से लिखा है कि एक जिस तरह नदी लगातार बहती है वैसे ही जीवन भी समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। नदी अपना रास्ता बदलती है, उसमें मोड़ आते हैं, उसी तरह जीवन की परिस्थितियां समय और पड़ाव बदलते हैं। नदी के रास्ते में पत्थर, चट्टाने और पर्वत आते हैं लेकिन वह रुकती नहीं बल्कि रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही जीवन की मुश्किलें आती हैं लेकिन वे अंत नहीं है। नदी अपने लिए पानी नहीं रखती, दूसरों की प्यास बुझाती है। जीवन का भी उद्देश्य यही है, दूसरों के काम आना। नदी अंत में सागर में मिल जाती है जो उसके अस्तित्व का मिलन बिंदु है। नदी के इस बहाव में संगीत में लय होता है, नदी इस लय में निरंतर बहती जाती है। कितनी अच्छी बात कही है ना। और यही नदी का बहाव अगर हमारे जीवन में हो जाए तो क्या कहना है। और ऐसी ही एक नदी है विविध भारती, जिस नदी के बहाव में हम बहते आ रहे हैं। तो आप भी साझा कीजिए अपनी विविध भारती के साथ वो किस्से, वो पहला किस्सा जब आपने पहली बार, सबसे पहली बार विविध भारती को सुना था, कैसा लगा था बताइएगा जरूर। और तब तक सुनिए ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों ने।

हाँ, तो ये जो मिलन आपका और हमारा है, ये तो सदा ही रहेगा। चाहे विविध भारती परिवार का कोई भी सदस्य कहीं रहे, पर वह विविध भारती से किसी ना किसी तरह से जुड़ा ही रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी यात्रा की, बड़ी सुंदर सी यात्रा है। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आपने कब विविध भारती को पहली बार सुना था, तो मन में मत रखिए, जरूर बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने लिखा कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो कब से विविध भारती सुन रहे हैं। ऐसा मैं भी कह सकती हूं कि मैं शायद पालने में थी तब से विविध भारती सुन रही हूं, ऐसा आप भी कह सकते हैं। पर हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया है कि 1968 में फर्नीचर से बने रेडियो पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर गीतमाला सुनने का मौका मिलता था। क्या बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन बहुत नटखट था, पूरा दिन धूप में घूमना, फल तोड़ना, फिर मार का डर कोई घर आकर बता ना दे, फिर नदी में पूरा दिन नहाना, और पापा विविध भारती सुनते थे तो मुझे विविध भारती सुनना पापा ने सिखाया। पिता ही हमारे जीवन में सही दिशा हमें देते हैं, और आपके लिए भी बहुत अच्छी दिशा दी है। हमारे श्रोता ने इसके बारे में लिखा है कि हमने जो उन्हें संदेश दिया है, उस संदेश को उन्होंने संक्षिप्त में बताया है कि इंसानी जीवन बहता रूप, सरिता, नदी, सागर, जीवन की उम्र बढ़ती धारा जो बचपन से जीवन की संध्या तक बहती रहती है, कभी दुख की रात, कभी कभी खुशी के दिन, मन में कई स्वप्न संजोए आखिरी तक प्रयत्नशील रहता है जीवन, हर तरह के संकटों के पहाड़ों से उभरते हुए, समस्याओं के जंगल में घेरे हुए, अगर डटकर जीवन के प्रवाह में बहते रहें तो फूलों के बाग किनारों तक पहुंच जाते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी कविता भी लिखी है, लेकिन कविता सुनाने के पहले जान लें कि जो गीत हम सुन रहे थे तू गंगा की मौज में, वो गीत बैजू बावरा फिल्म से हमने लिया था। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ बहुत सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे। चलिए हम चलते हैं उस कविता

तरफ जो हमारे श्रोता ने लिखी है कि सरिता बहती रहती रही चुपचाप अपने ही सागर की तलाश में, हर मोड़ पर कुछ खोती गई, कुछ यादें बसी रही सांस में। जीवन भी कोई राग ही तो है जिसमें सुर कम सिसकियां ज्यादा हैं। हम मुस्कुराते जरूर हैं बाहर से पर अंदर ही अंदर कहीं बारिश आधी आधी है। विविध भारती उन लहरों में जब कोई पुराना गीत उतरता है तो लगता है जैसे बचपन फिर से मेरे आंगन में चुपके से ठहरा है। वो दोपहर है, वो शाम है, वो रात है जब रेडियो ही अपना यार था, हर धुन में अपना कोई मिलता, हर दिल बेकरार था। कुछ सपने थे जो सो गए थे, वक्त की चादर ओढ़कर कहीं आज वही जाग उठे हैं फिर से इन सुरों में, हल्की रोशनी में यही। ये प्रेम कहानी भी अजीब है, ना पूरी हुई ना खत्म हुई, बस एक धुन बनकर रह गई जो हर दिल में चुपके से नम हुई। पर्वत भी रोई, नदियां भी बोली, वन उपवन में दर्द सुनाया है। ये सफर नहीं एक एहसास है जिसने जीना सिखाया है। तो चलिए बहते हैं आज भी उन अधूरे गीतों की राहों में, जहां हर सुर में दर्द छुपा है, हर दर्द में प्यार है चाहों में। क्या बढ़िया लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत सा लिखा है। और हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बड़े प्यार से कि आपने विविध भारती को सबसे पहले कब सुना और सुनकर कैसा लगा था। तो हमारे कई श्रोताओं ने उत्तर दिया कि हमारे लिखते हैं श्रोता कि 1980 में मौसम का तकाजा है ये गीत वीबीएस चित्रलोक में सुना और वो वाल्व वाला रेडियो शॉर्ट के साथ सुना था। जी बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने 1957 में अक्टूबर में सुना था सबसे पहली बार। और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे गीतों को शामिल करें, बिल्कुल प्रयास करेंगे, अब आपके और हमारे गीत पसंद के हों तो बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने भी लिखा कि पिताजी के रेडियो सुनते आ रहे थे तब से हम सुन रहे हैं। कोई लिखता है 55 वर्षों से विविध भारती से जुड़ाव उनका बना है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने 10 बैंड का रेडियो लिया था, इसमें मेगावाट, शॉर्ट वेव, FM, TV1 सब कुछ था और इसमें विविध भारती के गाने सुनते थे और पढ़ाई भी करते थे। हेलो फरमाइश फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम लकड़ी से बनी रेडियो देखा बचपन में, जब बच्चे थे तो कोसते थे कि इसमें कौन आदमी कहां से बोलता है, चक्कर में रेडियो तक खोल देते थे। आपको सच बताऊं मैंने भी खोल दिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मां सुनती थी इसलिए विविध भारती हम की अनायास आदत हम में भी पड़ गई। हमारे श्रोता लिखते हैं विविध भारती कब पहली बार सुना है तो नहीं पता, लेकिन जब भी सुना यहां तक सभी कुछ है भाई, संगीत, नाटक, कहानियां, समाचार, दुर्लभ जानकारियां, सखी सहेलियां, आप तो फेसबुक पर यार मित्र भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि विविध भारती से गाने तो सुनाई देते पर ध्यान से अगर कुछ सुनने की बात होती तो वह था हवा महल और हमारे घर के खाने का टाइम हुआ करता था। हम सभी थाली लेकर रेडियो के आसपास बैठ जाते, करौंदे की चटनी, उदयपुर की ट्रेन, कौन से बाबूजी, शनिवार के दिन जयमाला, महमूद साहब का जयमाला, चलो ख्वाबों की दुनिया में। क्या बात है आपकी, कितनी सुंदर यादें हैं विविध भारती के साथ में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती को हमने शॉर्ट वेव बैंड पर खरखराती आवाज में सुना था, उसके बाद विविध भारती दिल्ली विज्ञापन प्रसारण सेवा को सुना, फिर हमें मालूम पड़ा कि विविध भारती के और भी स्टेशन हैं, तो सर्च किया तो रेडियो पर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते थे सिर्फ रात के समय पति पकड़ में आते थे। विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम बेला के फूल एक मशहूर कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये मेरे मन की बात है, मनपसंद विषय, मुझे याद नहीं विविध भारती पहली बार कब सुना। मैं अपने शब्दों में कहूं तो विविध भारती के साथ ही बड़ी हुई हूं, होश भी संभाला है, पैदा ही हुई हूं विविध भारती के साथ, यह मेरी हमजोली है, ये कुछ ही दिनों बड़ी है मुझसे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मैं अकेला आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स होता हूं तो बचपन याद आ जाता है, गांव की नदी में नहाने जाते थे, दोपहर के बरगदों के पेड़ों के झूला झूलते थे, फल खाते थे, वो भी क्या बचपन था, 100% प्रकृति से जुड़ाव था जो छूट गया है मुझे, गांव का वो पत्थर, वो ओटले, सब कुछ यादें हैं जहां हम सब दौड़ते थे और बैठ जाते थे। कितनी बढ़िया अच्छी बातें हैं, पर अभी मन कर रहा है कि हम आपको उस समंदर के किनारे ले जाएं, क्योंकि हमने आपके सामने जो इबारत रखी थी उस इबारत में हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि जो जीवन संगीत है उसमें सरिता बहती है और सागर में जाकर मिलती है।

इस फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने तो खिलखिलाकर मुस्कुराकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी चॉइस आ गई और आपकी पसंद का गीत हमने आपको सौंपा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और जी बिल्कुल सही, नौशाद अली इस गीत के संगीतकार हैं और आज उनकी पुण्यतिथि यानी उनका स्मृति दिवस है, तो हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये बेहद खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि आपने विविध भारती सबसे पहली बार कब सुना, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी विविध भारती सबसे ज्यादा सुना लता जी के गीतों को, और जिसके साथ पढ़ाई भी की, और रेडियो को कई बार खोला भी बिगाड़ा भी, और बन गया गीत लिखना जितना, फिर जितना रह जाए वो अगली बार आने पर पूरा करना कितना अच्छा था। सो टाइम से अपना काम करना और समय का पता भी ना चले, गीतों से प्यार तो था ही, तो जब हमारी पसंद का गीत आता तो खुशी से नाचना। बिल्कुल, हमारे श्रोता लिखता है हमारे पास लकड़ी का बना वॉल्व वाला रेडियो था जिसको गर्म होने में भी समय लगता था फिर चलता था। 1978 के आसपास से रेडियो सुनना शुरू किया, तब मात्र 8 साल के थे। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र से ही। हमारे एक श्रोता ने विविध भारती के लिए बहुत अच्छी बात लिखी कि आपने आपने विविध भारती से जुड़ी यादें और संगीतों के बहाव को बहुत ही काव्यात्मक तरीके से पिरोया है। यह सच है कि विविध भारती के गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एहसास है जो हमें बचपन की गलियों और सुनहरी यादों तक ले जाते हैं। सरिता सागर, जीवन का बहाव और बचपन की स्मृतियां, ये शब्द सुनते ही मन में एक रोमानी, शांत और पुरानी यादों वाली प्लेलिस्ट बन जाती है। और हमारे एक और श्रोता ने उत्तर दिया, बचपन में जब शाम होती थी घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी, बीबीसी की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत, हवा महल की कहानियां। विविध भारती सिर्फ मनोरंजन नहीं है, धागा है जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़ रखा है। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। एक वक्त था जब सुबह जयमाला की से दिन की शुरुआत करते थे और रात को छाया गीत सुनते हुए

सो जाते थे, रेडियो में कोई चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन आवाजों के साथ आत्मीय रिश्ते बन जाते थे। बिल्कुल सही बात है, और इन्हीं रिश्तों के लिए आज हम आपके साथ में यहाँ पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे और हमने जो इबारत लिखी उस इबारत में हमने बात की थी कि जीवन जो है ना, वो संगीत जो है उसका बहाव का नाम है, बस संगीत बहते जाना चाहिए। तो बह चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ। अब ये सुमधुर गीतों में ये वाला जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूं ना, ये गीत मुझे ये नहीं पता कि ये रेडियो का पहला गीत है जो मैंने सुना था, लेकिन ये मेरी याद का पहला गीत है जो मेरे कानों में पड़ा था। तो चलिए सुनते हैं ये मेरी याद का पहला गीत, और आप बताइएगा कि इस गीत की गायिका कौन है।

हम सुन रहे थे नाची मयूरी फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था बस इतना ही कि इसके गायिका कौन है, तो आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि एस जानकी ने इसे गाया है, सुधा चंद्रन ने बड़ा खूबसूरत नृत्य इस पर किया है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे श्रोताओं की बातों पर। और ये जो बचपन की बात है ना, ये बड़ा खूबसूरत सा दौर होता है और इसी दौर में हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे नाना नानी मामा मामी मौसी ये सब हमारे यहाँ रेडियो सुनते थे, तो उनके साथ हम भी रेडियो सुनने लगे, इसलिए मेरी मम्मी को भी रेडियो की आदत है, गाना सोने के पहले बेहद शौक है, वह सुनती हैं। और अब हम आपका प्रोग्राम रेडियो पर चलाकर सुनते हैं, मेरी मम्मी भी चला लेती हैं और वह बड़े प्यार से विविध भारती तो सबके दिल की धड़कन है, ऐसा वह लिखती हैं। और वह यह भी लिखती हैं

आई लव रेडियो, ऐसा प्यार बना रहे तो कितनी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरे भाई बहन पढ़ते वक्त विविध भारती सुनते थे और अब वह रोज सुनती हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि विविध भारती 2003 में आज के फनकार का कार्यक्रम सबसे पहला सुना था, ऐसा उन्हें थोड़ा थोड़ा याद है। क्या बात है, आज के फनकार कार्यक्रम में हम याद भी हमारे बड़े सुरीले या बड़े अच्छे कलाकारों को याद करते हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म में जो बड़ा खूबसूरत सा गीत है उसके बारे में लिखते हैं कि ये रचना बड़ी प्यारी है।

0: ये हमारे बड़े सुरीले या बड़े अच्छे कलाकारों को याद करते हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म में जो बड़ा खूबसूरत सा गीत है उसके बारे में लिखते हैं कि ये रचना बड़ी प्यारी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनका 60 साल की उम्र उनकी उम्र हो गई है और बचपन से ही विविध भारती सुनती हैं और अब 60 प्लस हो चुकी हैं। धन्यवाद, ऐसे ही सुनते रहिए। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। विविध भारती की पहचान कमल शर्मा जी से है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। बिल्कुल, आपको उनका अंदाज पसंद है, सभी को पसंद आता है किसी न किसी का बोलना सुनना और अद्भुत उद्घोषक इस मंच से आप सबके बीच में आए हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इस दुनिया में आई थी तो एक आवाज भी आई थी, विविध भारती की धुनें और पापा की परछाई, आज भी जब बजता है वो पुराना सा तराना लगता है जैसे फिर उनकी गोद में लौट आई हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि मैं जो गीत वो सुन रहे हैं, जो रेडियो वो सुन रहे हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि एक बड़ा सा एंटीना लगा था और जब भी स्टेशन नहीं पकड़ता था तो बिजली के किसी तार को उसमें टच कर देते थे और वो तुरंत सही हो जाता था। हाँ, ये हम लोग भी करते थे। तो ये बचपन की बड़ी अच्छी बातें हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वह 60 के आसपास आ गए हैं और ये सफर का जादू जो है वो उनके साथ लगातार चलता जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे ही आप सजे रहिए, विविध भारती के साथ बने रहिए, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर एक बहुत सुंदर सा परिवार बनाते हैं और ये परिवार एक दूसरे को साथ में जोड़े रहता है। अब मैं अगला गीत आपको सौंपूं तो उसके पहले एक प्रश्न आपको देना चाहती हूं। हालांकि हमारे श्रोता ने एक और लिखा है, शोले फिल्म का डायलॉग था, यह काम तुम लोग कब से करते हो? जवाब था, बस होश संभालते ही शुरू। भाई
1: कौस्तुभ पटाईत राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, 5 विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर तिथं राजकीय हालचालींना वेग, देशातल्या वाहनांच्या किरकोळ विक्रीत एप्रिलपर्यंत 12.94% वाढ, पश्चिम आशियात युद्ध थांबलं नाही तर पुढच्या वर्षी जगात आर्थिक वाढीच्या दरात 2.5% घट होऊ शकते असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज, इराणनं संयुक्त अरब अमिरातीवर केलेल्या हल्ल्याचा अनेक देशातून निषेध आणि आनंद आरके आणि सुवर्णा शर्मा या पत्रकारांना यंदाचा पुलित्झर पुरस्कार जाहीर। पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, आसाम आणि केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरीमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत। पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूत सत्ताधारी पक्षांचा दणदणीत पराभव झाला असून दोन्ही ठिकाणच्या पदस्थित मुख्यमंत्र्यांचा आपापल्या मतदारसंघात पराभव झाला। ऐकूया याबाबत सविस्तर माहिती आमच्या प्रतिनिधीकडून।
2: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपनं प्रचंड बहुमत मिळवून इतिहास घडवला। मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर होणाऱ्या पहिल्याच निवडणुकीत 15 वर्ष सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला। पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने 206 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे तर तृणमूल काँग्रेसने 80 जागा जिंकल्या आहेत। या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला केवळ 2 जागांवर समाधान मानावं लागलं तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला 1 जागेवर विजय मिळाला। तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला। बबानीपूर मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांचा भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी यांनी सुमारे 15,000 मतांनी पराभव केला। दरम्यान निवडणूक आयोगाने फालता मतदारसंघात 21 मे रोजी फेरमतदान घेण्याचे आदेश दिले आहेत। मतमोजणी 24 तारखेला होईल।
3: तमिळनाडूमध्ये तमिळ वेजी कळगम हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे। पक्षाध्यक्ष जोसेफ विजय यांची विधिमंडळ पक्ष नेतेपदी निवड झाली आहे। टीव्हीकेला 234 पैकी 108 जागा मिळाल्या असून सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यावी अशी ईमेल विजय यांनी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांना लिहिली आहे। दरम्यान एमके स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा आज राज्यपालांकडे सुपूर्द केला। आपल्या मतदारांचे त्यांनी आभार मानले। 59 जागांवर विजयी झालेला द्रमुक पक्ष जबाबदार आणि ताकदवान विरोधी पक्षाची भूमिका निभावेल असं त्यांनी म्हटलं आहे। केरळात मतदारांनी काँग्रेस प्रणित युडीएफला संधी दिली आहे। युडीएफला 102 जागा मिळाल्या तर सत्ताधारी एलडीएफला 35 जागांवर समाधान मानावं लागलं। भाजपला प्रथमच केरळात यश मिळालंय। त्यांचे 3 उमेदवार निवडून आले। दरम्यान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी पदाचा राजीनामा दिला असून नवीन सरकार स्थापनेपर्यंत ते काळजीवाहू

और इस खूबसूरत से साथी के साथ में हम बात कर रहे थे उस इबारत की कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही जीवन संगीत का बहाव का नाम है। तो चलिए बहते हैं सुमधुर गीतों के साथ, विविध भारती को चाहने वाले जब सुबह से लेकर सांझ तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो जी लेते हैं अपना बचपन, और कई स्मृतियां और मन के भाव जाग उठते हैं और स्वप्न की लीला में जाकर कहीं सो गए थे। यहीं से आरंभ होता है एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती है और जो हौले हौले बढ़ती जाती है, पर्वत नदी वन उपमन होते हुए ये यात्रा गीत संगीत पर समाप्त होती है। और इसके साथ ही हमने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं और उनका उत्तर आप बड़ी मोहब्बत से देते जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने पूछा हमने उनसे कि आपने कहाँ कहाँ जाकर इस रेडियो को सुना है, यानी विविध भारती को सुना है, तो विदेश में रहकर विविध भारती को सुनने का मजा कुछ और है, विदेश में विविध भारती मिली इस बात के लिए उन्होंने हृदय यानी दिल का चिन्ह हमारे लिए भेजा है। हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था कि ये जो गीत है इसके गीतकार कौन है, हमारे श्रोता ने उत्तर दिया मजरूह सुल्तानपुरी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और हमारे श्रोता ने एक बड़े प्यार से लिखा है कि जब बचपन में परिवार के साथ घूमने जाते थे तो रेडियो साथ में ले जाते थे, क्योंकि उस समय 7:05 पर सैनिकों के लिए प्रस्तुत जयमाला प्रोग्राम जो आता था, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अलग अलग पसंद है, और वह सुनते थे। आज के मोबाइल में अनेक तरह की एक्टिविटी होती है, मगर आज भी हम रेडियो से जुड़े हैं, विविध भारती रेडियो एप्स पर कमेंट करते हैं और जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने दीवाने हैं। और हमारे श्रोता देखते हैं, मैं आज तक ऐसी जगह नहीं गई जहां कुछ भी ना मिले, जहां कुछ भी ना मिला हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है। मैं मसूरी गई थी तो दूर शॉप की दुकान पर दुकानदार अंकल लोग गाना लगाकर सुना करते थे, जहां से मैं गुजरी गाना चल रहा था तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ये गीत ही तो है जो हमें जोड़ते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट पर पहाड़ियों पर घूमने भी गई।

नहीं, उन्हें शायद रात में वहां रुकना अच्छा नहीं लगा। देखिए, सबको अपना अपना बिस्तर, अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छोटे थे तो पापा 15 रुपए देकर बोलते थे दुकान से रेडियो की बैटरी के लिए ले आओ, तो जब तब शेल बोलते थे। हाँ, तो शेल लेने कौन कौन जाता था, ऐसा इनका प्रश्न है। मेरे जीवन में कुछ ऐसा समय आया, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, तब साथ दिया विविध भारती ने, और धन्यवाद विविध भारती, हम सब एक साथ हैं हमेशा। ये विविध भारती केवल रेडियो नहीं, एक बड़ा परिवार है और हम उस परिवार के साथ हैं। बिहार की पहचान साइकिल और रेडियो हुआ करता था। सुना है बिहार में शादी से पहले रेडियो और साइकिल ही दिया जाता था लड़कों को। क्या बात है। हमारे यहाँ हमारे श्रोता बड़े प्यार से लिखते हैं, घर के बाहर ले जाकर तो नहीं सुना, पर छत पर ले जाकर उन्होंने जरूर कई बार विविध भारती को सुना है। तो आप विविध भारती को ऐसे ही सुनते रहिए। हमारे कुछ श्रोता ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इस पर हम बात ज्यादा कर रहे हैं, गीत कम सुना रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर वही सुना रहे हैं जो हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उनके मन की भी सुनना थोड़ी सी जरूरत लगती है। विविध भारती बने रहने से सुख दुख का साथ ही है। एक बार डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तब विविध भारती पर गीत बजने लगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे, लगा कि यह गाना मेरे लिए ही है। और उस समय मैं फिर से जीवन से भर गई, मैं संभल गई, विविध भारती ने मुझे संभाला है। कितनी बड़ी बात है यह हमारे लिए। हमारे श्रोता ने लिखा कि ऊंचे बर्फीलों की यात्रा कर रही थी, कार में की विंडो से पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य निहार रही थी, साथ में यशुदास के बजे हुए गीतों के ने उनके मन को बड़ा सुकून दे दिया। तो चलिए, ऐसे ही बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारी हैं विविध भारती से जुड़ी ही बहुत सारी बातें। बस इतना बता दीजिए कि कभी विविध भारती को सुनने के लिए अपने भाइयों से या बहनों से लड़ाई की है, हमने तो की है, आप जरूर बताइएगा। तब तक सुनिएगा ये प्यारा सा नगमा और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे रुला के गया सपना मेरा, ये गी ज्वेल थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे बोल दिए। बिल्कुल हमने आपसे कहा था संगीतकार पहचानिए और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, बड़े वर्मन दा यानी सचिन देव वर्मन ऐसा करके आपने उत्तर दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं विविध भारती के को लेकर, जो उनकी यादें हैं उसको लेकर, और उसी उन्हीं यादों को लेकर हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया है कि पहले जो 1997 में उनकी शादी हुई थी तो उन्हें रेडियो, पंखा, आयरन, सोने की अंगूठी ये सब मिला था, पर रेडियो उनके दिल से लग गया था, यानी सोने की अंगूठी से अधिक उन्हें रेडियो पसंद आया था। अब हमारे श्रोता बताते हैं कि हमारे घर हो या पड़ोस का घर हो, पूरा दिन विविध भारती बजती रहती है, इसलिए लड़ाई कहा सुनी करने की जरूरत नहीं होती या संस्कार विरासत में मिले। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जी बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होता था जब 72 में विविध भारती के कमर्शियल प्रोग्राम शुरू हुआ था, बीके अंताक्षरी जैसे शिव कुमार जी पेश करते थे, उस समय अगर टेस्ट मैच आता होता तो भैया से झगड़ा होता था, ना रहेगा बांस ना बजरेगी बांसुरी, यह कहते हुए बड़े ट्रांजिस्टर की बैटरी निकाल देते थे। ये लड़ाइयां बड़ी अच्छी होती हैं, आज भी याद आती हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के लिए कभी लड़ाई नहीं हुई, मेरी बहन है नहीं तो हाँ मेरे मिस्टर से जरूर लड़ाई करती हूँ रेडियो के लिए, जब विविध भारती चालू हो तो आप उससे कम जो बोलना हो वो पहले बोल दिया कीजिए। बिल्कुल सही बात है, विविध भारती एक ऐसा एहसास है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अकेला हो कितना भी दूर हो, विविध भारती एक ऐसा चैनल है जो कहूँ परिवार है, जो व्यक्ति के अकेले के एहसास हो नहीं सकता, रेडियो से जुड़ा है जो वो अकेले हो नहीं सकता। हमारे श्रोता लिखकर कहते हैं कि आपको भी याद होगा कि पहले जब कोई रेडियो खरीद कर लाता था तो सबसे पहले कितने बैंड का है ये पूछा जाता था, बाद में ब्रांड का। बिल्कुल सही है, रेडियो पर कमेंट्री आती थी, कान लगाकर कमेंट्री सुनते थे, उसके लिए कई बार घर वालों से डांट भी खाई है, पढ़नी ही चाहिए, जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि उन्हें एफएम रेडियो चाहिए जो मिल नहीं रहा है, अगर कोई मदद कर सके तो अवश्य कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस विषय पर लिखी हैं, हम आपको अगला गीत पेश करना चाहते हैं और हम आज की जो इबारत हमने लिखी उस इबारत में हमने आपसे एक और जिक्र किया, एक जिक्र किया हमने प्रेम कहानी का, और ये प्रेम कहानी आपकी और हमारी है, यानी उस विविध भारती के साथ आपकी हमारी जो प्रेम है उस प्रेम कहानी में शायद कोई और आज तक आ ही नहीं पाया, जलन की बात ही नहीं थी और किसी के होने का जज्बात ही नहीं था। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा प्रेम कहानी का गीत और आपकी विविध भारती के साथ आपके प्रेम को जांचते हैं, आंकते हैं, बताइएगा कि इस गीत के गायक कौन है, और सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

हम सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत, बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, आनंद बख्श के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ प्रेम कहानी फिल्म का यह प्यारा सा नगमा। और हम चल रहे हैं अंतिम पड़ाव की ओर। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका पढ़ देती हूँ। कि हमारे श्रोता ने बताया कि उन्होंने किस तरह से 2002 में रेडियो सुनना शुरू किया था, और किसी का कहना है कि वो दुबई आना जाना था तो वहां पर भी उन्होंने लोगों के बीच में विविध भारती फेमस कर दिया, लोगों को सुना सुना कर। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि 1967 में मर्फी का विज्ञापन जो आया था, वह उन्होंने उसकी डिमांड काफी होती थी, वह बता रहे हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि वह, एक श्रोता ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि उनके लिए कहा जाता है कि उनके घर वाले कहते हैं कि जब ये अगर इस दुनिया से जाए तो इनके बगल में रेडियो जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि वह रेडियो रसोई में भी सुनती हैं, बेडरूम में भी सुनती हैं, हर जगह सुनती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया है कि वह रेडियो को किस किस जगह पर सुनते हैं, मार्केट जाते हैं तब भी सुनते हैं और बहुत अच्छे से सारी बातों को सुन लेते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता ने बताया कि एक बुरा काल आया था इस धरती पर, उस काल में भी रेडियो ने इनका बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपने भाई के साथ लड़ाई भी उन्होंने बहुत अच्छी करी, क्योंकि रेडियो नहीं सुनने देता, एक बार रेडियो तोड़ दिया था, फिर बाद में सुधरवा के वापस सुनने लगे। ऐसे ही आप विविध भारती के साथ में प्यार करते रहिए, क्योंकि बचपन से आप रेडियो सुनते आ रहे और आगे तक सुनते रहेंगे, जीवन पर्यंत हम सुनते रहेंगे। रेडियो का साथ, विविध भारती का साथ हमारा और आपका कभी ना छूटे। और आज की इबारत में बहुत सारे गीत थे जो आपको सुनवाने थे, पर ये वाला गीत आपको सौंपती हूं और इसके बाद आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी।

हम वन उपवन पर्वत नदियां कहीं पर भी चले जाएं, पर हम हमारे प्रेम को, हमारे साथ को नहीं छोड़ सकते। विविध भारती का परिवार यूं ही बना रहे, आप सबके मंगल की कामना करती हूं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, किसी ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। आज का जमाना कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हर कोई सोचता है कि ये जो काम है वो बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से हो जाए, हमें उसके लिए मेहनत ना करना पड़े। एक जमाना था जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए मेहनत की गई, और जब मेहनत की गई तभी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, वरना बैठे बैठे सोचने से कुछ हो नहीं सकता था। मुंगेरी लाल के सपने तो सभी देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे रण युद्ध में कूदना पड़ता है और जीतना पड़ता है उस विजय को।

0: ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये चौड़ी सड़कें, ये चलता हुआ कारखाना, ये सब इसके पीछे कोई ना कोई मेहनतकश व्यक्तित्व है, उनका समर्पण है। कोई इंजीनियर दिन रात मेहनत करके इनकी डिजाइन बना रहा होगा, कोई श्रमिक पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें सजा रहा होगा। तभी आज हम बड़ी बड़ी कारखानों को चलते हुए देख रहे हैं और अपनी सुविधाओं की प्रत्येक वस्तु को अपने पास तक आते प्राप्त कर रहे हैं। यह सब आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। आज के जमाने में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि कई बच्चे, कई बड़े ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमें तो वो एक छोटी सी एसी कमरे में बड़े सामान्य सी कुर्सी के साथ में बैठ जाना है और काम करना है। यहाँ पर वही काम किया जा सकता है जो सरल है, परंतु कुछ नया करने के लिए जंगे मैदान में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज विचार करते हैं कि वो मैदान कौन सा है जिस युद्ध को लड़कर हमें अपने आप को विजित करना है।
1: नहीं, नहीं।

ये जो लोग हमारे लिए दुनिया बना रहे हैं, ये जो लोग हमारे लिए दुनिया सजा रहे हैं, ये दुनिया बनाते समय, इसे सजाते समय उनके सपने होंगे, उनके ख्वाब होंगे कि कोई तो होगा जो आएगा हमसे और अच्छा करेगा। मेहनत करने वाला वही अच्छा करने का गुरूर रखता है और मन में एक आशा रखता है कि अभी तक जो हुआ है उससे अच्छा हम कर जाएंगे। आज हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में अलग जगाता हुआ खड़ा है। उसके पहले उस पर की गई मेहनत, आज हमारा देश सारी दुनिया में गर्व से खड़ा है। उसे बनाने के लिए उस पर की गई मेहनत, प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक उस इंसान को प्रणाम करते हैं जिसने अपनी जंजीरों को तोड़ा, जिसने अपने आलस्य को छोड़ा और जिसने मेहनत को अपनाया और मेहनत को अपनाकर आज इतना सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर दिया। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी आगामी पीढ़ी, अभी की पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्तित्व अपने और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए सतत मेहनत करते रहेंगे। आज हम उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत की, कुछ कर गुजरे और इस दुनिया में अलग जगाई अपने और अपने देश के नाम की।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी

0: का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वीडी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री

0: ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
3: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
4: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजय घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग

मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवृद्धि सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया।

0: छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सदाबहार नगमे में जिंदगी और हम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में पंडित शिव कुमार के बोल और रोशन के संगीत के साथ सजा हुआ।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे ये गीत आशिक फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत असली नकली फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ ये खूबसूरत सा नगमा।

0: धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला नगमा, बात एक रात की फिल्म से, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे बंबई का चोर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल रवि के संगीत के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से। नमस्कार।

0: 5 आणि 19 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्याचा निर्णय. पश्चिम आशियात युद्ध थांबलं नाही तर पुढच्या वर्षी जगात आर्थिक वाढीच्या दरात 2.5% घट होऊ शकते असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज. आनंद आर के आणि सुवर्णा शर्मा या पत्रकारांना यंदाचा पुलित्झर पुरस्कार जाहीर. आणि पालघरमध्ये 44,92,200 रुपयांची ब्राऊन शुगर जप्त. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: ये गाना सुनते सुनते ऐसे ठंडी ठंडी वादियों का आनंद आने लगता है, क्योंकि वहाँ याद आ जाती है ना, जब सीन भी याद आने लगता है कभी कभी गाने का.
2: सचमुच हम नेपाल पहुंच गए.
1: हाँ, तो ठंडी ठंडी हवा ऐसे लगने लगी, ऐसा बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आ रहा था.
2: पर जो ठंडी होती है ना नेहा, ये जो जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें परेशान करती है.
1: जी बिल्कुल.
2: क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है. वैसे आज विश्व अस्थमा दिवस है, तो पूरे विश्व में अस्थमा रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है. और ये जो है ये दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है. और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थमा के कारण, लक्षण और बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देना है, ताकि लोग समय रहते इस बीमारी को पहचान सके और उचित इलाज करा सके.
1: जी सोनाली जी, और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो प्रदूषण बढ़ता हुआ, धूल धुआं और जीवन शैली भी जिस तरह से हमारी बदल रही है, उसके कारण भी अस्थमा एक गंभीर समस्या बन जा रहा है. क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में ये रोग दिख रहा है और उसे प्रभावित कर रहा है उन्हें. और देखा जाए तो श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है अस्थमा, और व्यक्ति की श्वास नलिका में इसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है. और अस्थमा के रोगी को आमतौर पर बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न सी महसूस होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं.
2: और कई बार ऐसा होता है कि नेहा मौसम परिवर्तन है, फिर धूल है, फिर धुआं है, तेज गंध, ठंडी हवा या किसी प्रकार के एलर्जी के कारण भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है. यदि समय पर उपचार ना मिले तो यह स्थिति गंभीर भी हो सकती है. और विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं. भारत में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है. विशेष रूप से महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है.
1: हाँ, क्योंकि वाहन से जुड़े प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या तंबाकू का सेवन, घरों में जो धूल जमा होती है, ये सब इसके मुख्य कारण है जो इसको ट्रिगर करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं. और इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण अस्थमा की संभावना बढ़ जाती होने की. और अगर आज के दिन की हम बात करें, विश्व अस्थमा दिवस, तो इस दिन पर विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान तो चलाए जाते हैं. कई शिविर लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर, जहां मुफ्त जांच की जाती है और अस्थमा से किस तरह से बच सकते हैं ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती है.
2: और इन शिविरों में इनहेलर से कैसे सांस ली जाती है उसका भी उपयोग हमें सिखाया जाता है. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हें ही अस्थमा होता है, यानी सांस संबंधी बीमारियां होती है. पर ऐसा नहीं है. अगर आपके घर में कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसके घर में जो मौजूद लोग हैं, बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है. तो जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ धूम्रपान करते तो आप ही को होगा, आपके पूरे परिवार को भी अस्थमा हो सकता है.
1: अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान ये भी हो रहा है, क्योंकि वो जो धुआं है वो उनके शरीर में भी जा रहा है और वो ज्यादा खतरनाक भी होता कहते हैं. और इनहेलर वगैरह की जानकारी तो उन्हें दी जाती है. साथ ही अस्थमा से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानियां कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये भी बताया जाता है. जैसे कि धूल और धुएं से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए जिन्हें इस तरह से बीमारी है. घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि धूल ना ज्यादा हो. धूम्रपान से बच सकते हैं, और कोई दूसरा अगर धूम्रपान कर रहा है जैसे कि आपने बताया, तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं. पर इसके अलावा नियमित व्यायाम कर सकते हैं. योग प्राणायाम जब करते हैं तो फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे हमारा जो अस्थमा की जो रोकथाम है उसमें काफी मदद मिलती है, क्योंकि सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है. पौष्टिक भोजन अगर हम करते हैं और स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं तो भी बीमारी से बचाव में ये सहायता करते हैं हमारी.
2: और एक जरूरी बात है नेहा, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांस लेने में तकलीफ हो रही पर हम बस ऐसे कि अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, आप ले लो, पर ऐसे नहीं है. उसे तुरंत हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए कि एक दो बार ठीक है घरेलू इलाज कर लिया तो ठीक है, पर इसे इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है. कि बुखार भी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि निमोनिया वगैरह हो सकता है या और भी गंभीर रूप की बीमारी हो सकती है, तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना.

0: यार कई लोग उचित सावधानी और उपचार के साथ सामान्य जीवन भी जीते हैं। अगर
1: जी
0: उन्होंने टाइम पे उपचार ले लिया ना तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसलिए अस्थमा जो है डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है।
1: जी तो आज के दिन का यही तो संदेश भी है सोनाली जी कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, प्रदूषण कम करें और अपनी सही जीवन शैली को अपनाएंगे तो अस्थमा जैसी बीमारी पर काफी हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जागरूकता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है। और अगर जो जी चीजें अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह से बच सकते हैं और आराम से रह सकते हैं उसके साथ भी।
0: एक हमारे साथी ने भी लिखा है इस विषय में कि अस्थमा जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह के सभी श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे हैं कि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी असर देखने को आता है। इसके रोकथाम उपचार और सचेत रहने के लिए आज का दिन अर्थात ये दिन मनाया जाता है। तो यानी कि अगर हमें जान लेना चाहिए कि अगर आपके घर में दादाजी वगैरह को, दादी को, नाना नानी को अगर किसी को अस्थमा है तो हमें समय रहते उपचार लेना चाहिए। ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए और अभी हमें वक्त जाया नहीं करना है क्योंकि वक्त हो चुका है एक
1: अंतराल
0: ब्रेक।
1: का।

0: तो जब अच्छे अच्छे गीत सब सुनाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस खो जाओ थोड़ी देर तक. लेकिन खो जाएंगे अगर, तो अपना लक्ष्य कैसे पाएंगे? सुना लीजिए हम.
1: हमें अपने लक्ष्य की ओर जागरूक होकर ध्यान रखना चाहिए नेहा. अब ये गाने जो है ना, ये घर में सुनते हैं तो मजा आता है कि भाई बैठे बैठे आग लग गई तो ठीक है. पर यहाँ हमारा लक्ष्य बिल्कुल
0: आंखों पर, अपने अपना लक्ष्य बिल्कुल लक्ष्य पे हमारी नजर होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम.
1: और ऐसी कुछ महिलाएं भी हुई जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य में उन्हें अपार सफलता भी मिली. और आज उनकी मेहनत के कारण इतना उसका फल इतना अच्छा है कि हम भी उनके प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं.
0: हाँ, और उन्हें याद करते हैं उनके काम के लिए. हो सकता है इसकी इसमें कितनी स्ट्रगल रहती है, कितना कुछ उन्हें करना पड़ता है इस सफलता को पाने के लिए, और इसके लिए ही हम उनके याद करते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ ऐसे ही सफल नहीं हो गई हैं, उसके पीछे कितना कुछ उन्हें करना पड़ा. तो आज हम याद करें शहनाज हुसैन को.
1: और भारत में उद्योग जगत में महिलाओं की सफलता की जब भी चर्चा होती है तब शहनाज हुसैन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने सौंदर्य और हर्बल उद्योग में ऐसी पहचान बनाई जिससे भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया था. और उनका जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था. बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और रचनात्मक स्वभाव की थी. उनकी शिक्षा अच्छे वातावरण में हुई, कम आयु में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा. उस समय महिलाओं का व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई.
0: और उन्हें सौंदर्य और त्वचा की देखभाल में विशेष रुचि थी, और इसी रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटी थेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त किया. लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन जैसे शहरों में सौंदर्य विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया. और जब शहनाज हुसैन ने अपने कार्य की शुरुआत की थी तो उस समय बाजार में ज्यादातर रासायनिक सौंदर्य उत्पादों का बहुत प्रयोग होता था, और इनसे त्वचा को तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होता ही था. तो उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति को पहचाना और हर्बल उत्पादों को अपनाने का उन्होंने निर्णय लिया. और ऐसे उत्पाद उन्होंने तैयार किए जिनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता था, जैसे चंदन, हल्दी, गुलाब, एलोवेरा, केसर और विभिन्न जड़ी बूटियां इसमें शामिल थी, जिससे ये जो उत्पाद थे क्योंकि ऐसी चीजों को इस्तेमाल करती थी त्वचा और बालों के लिए काफी अच्छे माने जाते थे. और धीरे धीरे लोगों का विश्वास उनके उत्पादों पर बढ़ने लगा और उन्होंने शहनाज हर्बल्स की स्थापना की.
1: और शहनाज हुसैन ने अपने घर से छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया था. धीरे धीरे उनका कार्य बढ़ता गया और उन्होंने शहनाज हर्बल्स नामक कंपनी की स्थापना की. ये कंपनी आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बन चुकी है. उनकी कंपनी ने भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और एशिया के अनेक देशों में भी अपनी पहचान बनाई है. और उनके सौंदर्य केंद्र और उत्पाद विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं. ये भारत के लिए गर्व की बात है. एक भारतीय महिला ने आयुर्वेदिक सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया. ये महिलाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात है. और शहनाज हुसैन ने केवल अपना व्यवसाय ही नहीं बढ़ाया बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया.
0: बिल्कुल. तो कई बार ऐसा हम कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित होता है. उसी तरह से अगर एक महिला सफल हुई तो अपने साथ कई महिलाओं को सफल होने का मौका भी देती है, और साथ ही उनकी ओर देखकर भी बहुत सी महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं. तो उन्होंने महिलाओं को ब्यूटी और वेलनेस प्रशिक्षण दिया, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी, और बहुत सी महिलाएं आज भी उनके प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेकर सफल व्यवसाय चला रही हैं. और महिलाओं को उन्होंने यही संदेश दिया कि घर तक सीमित ना रहो और अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है आपकी, उसको पहचानो. लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सफल हो गई और ये सारी चीजें कर रही हम कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई संघर्ष तो होता ही है. तो उन्होंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया. शुरुआत में लोगों को हर्बल उत्पादों पर उतना भरोसा नहीं हुआ करता था, कहते थे कि भाई पता नहीं कैसा रहेगा. आर्थिक चुनौतियां भी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर हर चुनौती को उन्होंने पार किया. फिर धीरे धीरे उनका नाम सफल महिला उद्यमी की ओर बढ़ता गया, प्रसिद्ध होती गई. और कई महत्वपूर्ण गुण थे उनके, जैसे कि आत्मविश्वास
1: और कठिन परिश्रम, नई सोच, आयुर्वेद पर विश्वास, ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण. पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इसके अतिरिक्त उन्हें विश्व के कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया.

0: उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उनकी उपलब्धियां जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ही भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को नई पहचान दी और रासायनिक उत्पादों की बजाय इन उत्पादों को अपनाएं और इसके लिए प्रेरित भी किया। और अब देखा जाए तो हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद कितने बढ़ रहे हैं, और लोकप्रियता बढ़ाने वाली कौन है? शहनाज हुसैन।
1: शहनाज हुसैन जी, तो उन्हें हम याद करते हैं और हम भी अपनी सखियों सहेलियों को कहेंगे कि इन सब जो महिलाओं की जब हम बातें करते हैं तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी अगर मन में कुछ इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुनना चाहिए।
0: हाँ, मन में इच्छा तो हो गई है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो ऐसे गोरे गोरी बातें कर रहे थे हम।
1: गोरे होने की
0: हाँ,
1: बातें।
0: लेकिन कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि देखिए रंग जिसको जैसे जो मिलता है उस रंग को अगर अपनाया जाए तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा मन में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट अपनाए जाए जो त्वचा की जैसे नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं,
1: यानी कि अगर
0: या
1: सर्दियों का मौसम है तो
0: हाँ
1: हमारी मॉइस्चराइजर, ये घर के भी इस्तेमाल कर सकते
0: हाँ
1: हैं कि हम अगर दूध की मलाई को थोड़ा सा लगा ले, और कुछ लोग रात को अपना घी

0: त्वचा की जैसे नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं,
1: यानी कि अगर सर्दियों का मौसम है तो हमारी मॉइस्चराइजर ये घर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अगर दूध की मलाई को थोड़ा सा लगा लें, और कुछ लोग रात को अपना घी लगा लेते हैं, उससे भी सॉफ्ट हो जाती है स्किन। और बहुत सारी महिलाओं को है ना, जो हमें नहीं मिला होता उसका गम होता है कि भाई हमारा रंग तो सांवला है, तो क्या हुआ, सांवले रंग के लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं। एक अगर हम अच्छे से रहे, एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, तो कोई भी रंग कोई मायने ही नहीं रखता है, हमारा व्यक्तित्व मायने रखता है।
0: अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम हैं उस तरह से अगर हम खुद को अपना लें, कि जैसा जो चीजें नहीं बदली जा सकती उसको अगर उस तरह से अपना लिया जाए, और उसके बाद अपने व्यक्तित्व में हम काफी बदलाव ला सकते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, तो वहां तो हम अच्छे की ओर जाते जाएं। लेकिन जो जैसे त्वचा है, त्वचा का कोई रंग हो या कुछ, मान लीजिए कि कभी किसी के मुहासे ज्यादा निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते हैं, तो वो अब उसकी त्वचा तो अच्छी है, वो क्यों नहीं निकल रहे हैं इसके मुहासे, तो इस तरह की चीजें ना सोचकर अपने आप को अपना लेना चाहिए ना।
1: और अब हमें ब्रेक
0: लेना चाहिए,
1: तो लेते हैं ब्रेक
0: जी।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे श्रोताओं के हैं बहुत सारे कमेंट्स। तो जो मुहावरों की दुनिया, इसमें जो हमने लिया है मुहावरा, घर की मुर्गी दाल बराबर।
1: तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, ये हमारे साथियों ने भी लिख भेजा है, बहुत से कमेंट्स उन्होंने भेजे हैं और सारी चीजें बता दी है उन्होंने कि क्या क्या अर्थ होता है।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं नेहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर आपको कितना भी मान सम्मान मिले पर घर में कोई इज्जत नहीं मिले तब ये कहावत कही जा सकती है। अक्सर सबके घर में पतिदेव का यही हाल होता है, मुझको छोड़कर। आपने देखिए कितना सेफ गेम खेला है ना।
1: हाँ, कमेंट्स है ना बाहर, ये कमेंट सारा।
0: हाँ, तो
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने ही आदमी की कद्र ना होना। जब कोई मूल्यवान चीज या व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है तो हम उसे साधारण या कम महत्व का समझने लगते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमेशा पास में होती है उसकी कीमत कम समझी जाती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर में कितना भी अच्छा हो खाना, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जंक फूड ही पसंद आता है, ये भी उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर के लिए कहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है नेहा की घर की मुर्गी दाल बराबर में ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो भी बच्चों को कह लीजिए उनके परिवार वालों को उतनी वैल्यू नहीं होती उनकी। बाहर के लोग कहते हैं कि अरे कितना ज्ञान है इन्हें और इनके ज्ञान से हमें फायदा होगा, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि अरे इनके पास क्या है। तो ये कहावत हमारे सभी के लिए ये लागू होती है, तो हमें अपनों को भी महत्व देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अब जैसे हमने प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो हमारे पास में घर में इतना खजाना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, पर भी हम जो है ना बाहर के प्रोडक्ट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट जो होते हैं, क्योंकि उसमें कलर और फिर पैकिंग उनकी जबरदस्त होती है और उसमें खुशबू जो अलग सी आती है, तो उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं और हम अपनी चीजें जो अपने पास में है उन्हें हम इग्नोर कर बैठते हैं।
1: वही चीज जैसे हमने अभी कहा था कि हम अपने पास जो चीजें हैं उसको नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हम ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, सामने वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है वही सामने वाला हमारी उन चीजों को देखकर वैसा ही सोच रहा हो कि इसके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, कि इसके चेहरे की बनावट अच्छी, जैसे हम किसी का रंग देखकर सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा हो देखकर हमें कि इसके चेहरे की बनावट कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्या एक दूसरे की चीजों को देखते रहना और अपने पास जो चीजें हैं उसका महत्व न समझना ही इस मुहावरे को बिल्कुल सार्थक करता है, कह सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया कि घर की मुर्गी

0: बराबर भाई, इस मुहावरे का मूल मतलब है कि घर के लोगों की कोई कीमत नहीं। इस कारण ही से ही लोक में इस मुहावरे का चलन है। ये सच भी है क्योंकि घर के लोगों से लोग सुपरिचित होते हैं, जबकि बाहर के लोगों की कद्र करते हुए अच्छा खासा भाव देते हैं। इस दृष्टिकोण से घर के लोगों में स्वयं के प्रति हीन भावना भी पनप सकती है। इसके ज्ञान से अनभिज्ञ लोग ही ऐसा करते हैं।
1: तो कई बार ऐसे होता है ना कि नेहा, कि अपने घर में जो बच्चे हैं उनमें अगर कुछ कला है, उनमें अगर कुछ
0: हाँ
1: प्रतिभा है, तो हम उनकी तरफ अनदेखा कर देते हैं, और सामने हम टीवी में बैठे हैं, कोई बच्चे गा रहे हैं तो हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, देखो कितना अच्छा गा रहा है। अगर
0: हाँ
1: हमारे बच्चे जो हैं उनमें अगर वो कला है, वो अच्छे से गा रहे हैं या बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे नृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें अगर हम सजाएं संवारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो
0: हाँ
1: वो भी उन्हीं की तरह नाम कमा सकते हैं
0: तो कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने कहा होता है कि हम ये सीख लें या हम ये करना चाहते हैं, तो हम उन्हें डांट देते हैं।
1: ना।
0: और फिर सामने जब टीवी पे आप जैसे कह रहे हैं कुछ चलता रहता है, तो हम कह रहे हैं देखो ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी
1: कितना
0: उम्र का है,
1: अच्छा
0: कितना अच्छा गा रहा है। तो
1: गाया।
0: अब उसने, बच्चे ने भी शायद कभी बोला हो कि मुझे गाना सीखना है, तो हमने उसे डांट के कह दिया कि तुम पढ़ाई करो।
1: चुपचाप
0: तो
1: बैठ जाओ
0: हाँ, लेकिन हम
1: पढ़ने।
0: तारीफ उसकी कर रहे हैं, तो वो भी हीन भावना होती कि हमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, साथ में नहीं बढ़ने मिल रहा है। हमारे एक
1: यानी
0: साथी ने भी तो ऐसे ही कुछ कहा है, वो
1: हाँ।
0: कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते, दुखती रख पर हमारे हाथ रख दिया, ऐसा वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते हैं जो मैं धर्मपत्नी और बच्चों को बताकर सावधान करता हूं। जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के विषय में हो, उस समय तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकाल देते हैं। वहीं साइबर क्राइम की कोई घटना किसी न्यूज़पेपर में छपी हो या सखी सहेली प्रोग्राम में बताई जाए, तो सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी बड़े ध्यान से बच्चों को समझाती है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इसके विषय में तो मैंने पहले ही सबको सावधान किया था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बताइए, हमारी शिकायत हमसे ही हो रही यहाँ तो।
1: हमें ही घर की मुर्गी दाल बराबर बना
0: हाँ,
1: दिया।
0: हम तो रोज आते भी, हम लोग घर के ही
1: हाँ।
0: हैं, हम तो कोई ऐसा आप हमसे मतलब कहना नहीं चाहिए हम लोगों को।
1: एक साथी ने लिखा है, घर का बना भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट हो, कम पैसों में बना हो, तो भी घर का ही है। वही बाहर का भोजन बहुत अच्छा होता है, 10 या 20 रुपए की रोटी जो है वो, और 250 का सूप, महंगी सब्जी हमें अच्छी लगती
0: हाँ,
1: है
0: स्वाद बढ़ जाता है।
1: ना।
0: और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं तो नए नए बर्तन बाहर आते हैं, नई थालियां, नई चमकते चम्मच, कांच के गिलास, जब मेहमान आते हैं तभी ये सब देखने को मिलता है, बाकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो इससे तो हम भी सहमत हैं कि वो सारी चीजें तो बस रखी ही मेहमानों के लिए जाती
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो फिर इंतजार करती है गृहिणिया कि कब मेहमान आएंगे, तब ये
0: अब
1: नई वाली क्रॉकरी निकालेंगे।
0: ऐसा लगे गृहिणियों से ज्यादा तो घर के लोग उसका
1: सखा।
0: ध्यान रखते हैं कि कब ऐसा हो कि कोई तो आए तो ये इन थालियों में हमें भी खाने मिले, है ना।
1: पर अब गाना सुन ले, एक
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: और घर की मुर्गी दाल बराबर जब बात हो रही है तो क्यों ना बात हो जाए घर पर डाइट फूड और बाहर के जंक फूड की।
1: ऐसा ही होता है ना।
0: हाँ?
1: जब मम्मी कहती है कि भाई लड्डू खा के जाओ या फिर कुछ अच्छी मिठाई बनाई खा के जाओ, तो
0: हाँ?
1: बच्चे कहते कि नहीं हम डाइटिंग पे हैं, हम नहीं खाएंगे, कितना घी डाला है उसमें
0: हाँ?
1: और कितना सारा बटर डाला है, कितना सारा उसमें शक्कर या गुड़ डाला है, तो हम नहीं खाएंगे। और फिर बस घर में बस हम उबला हुआ खाएंगे, उबला हुआ उबली हुई सब्जी खाएंगे,
0: हाँ
1: उबला हुआ खाना खाएंगे, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि फोटो आ रहे हैं कि दोस्तों के संग बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये
0: कोल्ड
1: घर घर की कहानी।
0: ड्रिंक पी रहे। हाँ, घर की कहानी तो होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बाहर ही खा लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपने टिफिन दे दिया तो फिर बहुत ही बड़ा ऐसा मजाल आपके टिफिन को लेके जाता है हाथ से। तो स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत जागरूक हो गए हैं वैसे तो हम लोग, और कहते हैं कि कम तेल घी का घर में जो भोजन बनता है, हल्का भोजन बनता है, ऐसे ही बनाना चाहिए। अरे आप कितना तेल डालती हैं, कितना घी डालते हैं घर में खाने में, ऐसा हम बोलते हैं, जबकि घी अच्छा होता है खाने के लिए।
1: पर वो बच्चों को ऐसा
0: हाँ,
1: लगता है ना कि घी से हमारा वजन बढ़
0: मोटे हो
1: जाएगा।
0: जाएंगे। हाँ, बर्गर से वो पतले होते जाते हैं। तो वो कहते हैं कि फिटनेस करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, अब आज से हम एक ही रोटी खाएंगे, दूसरी रोटी नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन फिर बाहर जाते हैं तो फिर सारी बातें कहती है कि एक दिन पिज्जा
1: हाँ,
0: खाने वाले, जो
1: यानी
0: कि वो
1: उस
0: पूरा
1: दिन,
0: एक हफ्ते का
1: हाँ
0: सबसे
1: हाँ
0: निक्की नक्की हो जाता
1: यानी
0: साइकिल
1: हम
0: में।
1: एक दिन सिर्फ वो चीटिंग करते हैं कि
0: हाँ
1: एक दिन हम बाहर का खा लेंगे पर फिर बाकी दिन हम घर का नहीं खाएंगे, जबकि मम्मी का प्यार दुलार भी होता है उसमें,
0: हाँ
1: आत्मीयता होती है, और जो पराठे बनाती है तो मम्मी के हाथ के उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है
0: हाँ
1: कि उसे ढककर रखा जाता है, साफ हाथ धोकर बनाया जाता है, पर वही फिर से घर की
0: और
1: मुर्गी दाल।
0: पसंद का भी तो ख्याल रखा जाता है कि भाई जिसको जो पसंद है वो सब्जी बनती है, जिसको जो पसंद है वैसी रोटी बनती है, किसी को तिकोना पराठा पसंद है, किसी को चौकोर पराठा पसंद है, तो उसके हिसाब से। अच्छा, ये साइज भी बदलते हैं, शेप भी बदलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बस वही है कि नहीं, आकर्षक पैकिंग में जो बाहर का खाना मिलता है, स्वाद अच्छा लग रहा है, फैशन भी होता है ये सब चीजें, कि अगर अरे तुम तो घर का ही खाना खाते हो, इस तरह से अगर बोल दिया जाता है तो वो एक फैशन के साथ में जाने के लिए भी बाहर का खाना खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: और है ना, क्या होता है कि घर का खाना जब हम डब्बे में डाल के देते हैं तो कुछ समय में ठंडा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है ठंडा हो
0: हाँ
1: जाता है, पर बच्चों को वही लगता है कि वो गरम गरम खाना है तो स्वाद में थोड़ा सा अच्छा रहेगा,
0: हाँ
1: पर उसके पीछे जो है कितनी सारी माओं की मेहनत होती है, और फिर उसमें ये बात है ना कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो
0: हाँ
1: बाहर घर में हम कहेंगे कि हमें मैदा नहीं खाना है और बाहर जाके हम मैदा मैदे की बनी रोटी खा लेते हैं, और ना
0: हाँ
1: जाने ऐसी कितनी चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल। और आमतौर पर अगर हम देखें तो घर में जो खाने बनते हैं सिर्फ एक ही तरह का नहीं बनता, पारंपरिक भोजन बनता है, और कई बार ऐसा होता है अलग अलग मौसम के हिसाब से, त्योहार होते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से, भी गर्मी है तो ये चीज तो बनेगी ही बनेगी, आम पना बनेगा, आम का रस बनेगा, या ठंडी हो गई तो ये गुड़ वाली चीजें बनेंगी,
1: गोंद के लड्डू
0: हाँ
1: बनेंगे।
0: लड्डू बनेंगे। तो इस तरह से जो वो होता है ना, क्योंकि वो मौसम को ध्यान में रखकर परंपरा हमारी इस तरह की रही है,
1: यानी हमारे
0: तो हाँ
1: शरीर को जितनी जैसी जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से वो डिजाइन किए गए हैं,
0: हाँ
1: है ना, कि उस त्योहार से जुड़ी हुई कितनी सारी, यानी सांस्कृतिक महत्व भी है उसका कि वो फसल उगती है नई नई तो
0: हाँ
1: हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है, तो उससे बनाए हुए व्यंजन हमें खिलाए जाते
0: खाने
1: हैं,
0: चाहिए।
1: बनाए जाते हैं।
0: हाँ, तो अगर हम घर का भोजन खाएं तो ये सारी चीजें भी मिलती है, बाहर तो सारी चीजें एक ही मिल रही है, हमेशा वो मिल रही है, आप जब चाहें

0: वहाँ जाके लड्डू खा सकते हैं, आप जब चाहें वहां जाके कुछ भी खा सकते हैं।
1: हाँ
0: गर्मियों का भोजन आप सर्दी में खा सकते हैं, सर्दी का गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि पैकेट बंद आपको आम का रस 12 महीने मिल सकता है, लेकिन वो
1: हाँ
0: रस तो नहीं है ना
1: फ्रोजन होता है
0: उसमें।
1: वो। हाँ
0: हाँ
1: और फिर उसमें जो विटामिन जो है वो तो नष्ट हो ही जाते हैं,
0: हाँ
1: साथ में उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते,
0: जी
1: पर हम ये हाथ कह के हाथ ऊपर कर देते कि नहीं भाई हम बहुत तेल घी वाला खाना नहीं खाएंगे, हम तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, पर हम बाहर
0: सिर्फ समोसे खाएंगे बाहर। वो कई बार बेक्ड समोसा बोल के भी खाते हैं कई बार, बट रहता वो मैदा ही बेक्ड होता है।
1: और उसमें इतना सारा मोयन डला होता है, क्योंकि मैदे को अगर बेक भी करेंगे तो उसको जो कुरकुरा बनाने के लिए उसमें अगर मोयन ना डला होगा
0: जी
1: तो वो ऐसा कुरकुरा या स्वादिष्ट बनेगा ही नहीं।
0: तो ये कह सकते हैं कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे या बड़े जो भी हैं जिन्हें भी ये शौक है कि घर पे डाइट करते हैं और बाहर जाते ही साथ वो तुरंत वो अपनी सारी डाइट को भूल जाते हैं, एक दिन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पूरा एक दिन आपका पूरा एक हफ्ता की डाइट जो है बराबर कर देता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। और घर में भी जो खाना दे रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्यों ये बाहर का खाना ज्यादा खाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उसको आकर्षक ढंग से परोस सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस ये कटोरी में दाल दलिया और ये, तो अगर थोड़ा सा सजा कर दे दें तो उन्हें अच्छा लगेगा शायद, हो सकता है इस वजह से। और अगर साथ में बैठकर हम खाते हैं तो भी एक अलग सा एहसास होता है। तो इस तरह से कुछ चीजों में हम भी बदलाव कर सकते हैं, घर की चीजों में, देने के तरीके में, या उनकी पसंद की चीजें तो खैर बनती ही है, तो वो सारी चीजें अगर
1: नहीं,
0: हम
1: उसे भी
0: बदलेंगे।
1: आकर्षक बना के अगर
0: हाँ
1: परोसे ना तो बच्चे वो भी शौक से खा लेते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: तो दोनों तरफ ही सुधार की जरूरत है।
1: और अब गाना सुन ले।
0: हाँ
1: सुनते हैं गीत।

0: और हमें इंतजार रहता है अपने जन्मदिन का ताकि कितनी अच्छी तरह से हम अपने जन्मदिन को मनाएं और बड़े आराम से रहें अपने जन्मदिन में, कुछ ना कुछ करते ही हैं सब।
1: पर पुराने जमाने का जन्मदिन वो बिल्कुल भी ऐसा एकदम यानी आज की चकाचौंध वाला नहीं हुआ करता था, बिल्कुल सादगी से मनाते थे। और मुझे तो याद है नेहा कि मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा तो कि सभी लोगों के जन्मदिन ऐसे त्योहार के दिन कैसे आते, किसी का होली पे, किसी का दिवाली पे, किसी का राखी पे, तो हमारी मम्मी कहती थी कि जब उस त्योहार के आसपास जब आते थे तो उसी दिन सेलिब्रेट कर देते थे
0: तो एक साथ हो जाती, मिठाइयां बन जाती एक साथ, ज्यादा मिठाइयां बन जाती होंगी
1: तो इस तरह से सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुराने जमाने के जन्मदिन हल्की फुल्की बातें, पुराने जमाने के जन्मदिन पर अक्सर क्या हुआ करता था, आज जब हम अक्सर केक लाते थे उस समय लोगों को प्लेट में रखकर खिलाया करते थे, कोई समोसा खिला दिया तो किसी ने ढोकला खिला दिया, पार्टी की जगह ऐसे अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दिया करते थे। उसका जो मजा होता था बहुत अच्छा होता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, कुछ दोस्त आधा आ जाते थे, हमें कुछ पांच पांच 10 रुपए वाले जो गेम या टॉयज आते थे वे दिया करते थे, बहुत मजा आता था, सब मिलकर एक साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे। खास जो बच्चे होते हैं वे, यानी उन्होंने वही लिखा है कि उपहार 5-10 रुपए के उपहार में भी हम खुश हो जाते थे।
0: बिल्कुल। एक और साथी लिखते हैं कि पुराने जमाने में जन्मदिन मनाने का उद्देश्य यही था कि बुजुर्ग व्यक्तियों को परिवार में आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा हमेशा ऊंची रहे, इस कारण पिताजी या दादाजी का जन्मदिन बेटे पोते मनाया करते थे, खाना भी अच्छा होता था, खीर हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। पर आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, खान पान भोजन भी अच्छा नहीं होता लेकिन केक जरूर आते हैं, पर मैं खुद कभी भी नहीं खाता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के हाईटेक और भव्य समारोहों से बिल्कुल अलग सादगी और अपनत्व से भरे होते थे। उन दिनों जन्मदिन मनाना एक सादगीपूर्ण उत्सव था, जहां महंगे गिफ्ट से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता था। यहां पुराने दिनों के जन्मदिनों की हल्की फुल्की यादें, कि नया कपड़ा सादगी से सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए, फिर उसके बाद में फिर मंदिर या गुरुद्वारे में माथे टेकना, जन्मदिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती थी, उसके बाद आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाती थी, स्कूल में टॉफी देने का दौर था, फ्रॉक या शर्ट पहनकर जाना, पूरी कक्षा में जो है उन्होंने टॉफियों के नाम लिखे थे, टॉफियां देते थे, और घर का बना केक माँ अपने हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी टूटी फ्रूटी डालकर सजाकर बनाई जाती थी, और फिर गुब्बारे में फुलाकर गुब्बारे से फुलाए जाते थे और गेम खिलाए जाते, शोर शराबा, म्यूजिकल चेयर, पासिंग द पार्सल जैसे पारंपरिक खेल, जहां बच्चों की हंसी और शोर पूरे घर से गूंजता था, और गिफ्ट की सादगी उपहार में किताबें, कलर बॉक्स और हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे, जिन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था।
0: और एक और साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन की भारतीय संस्कृति में कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जन्मदिन देवों के मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, और स्वयं के अहंकार के चलते पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में ये मनाया जाता है, ऐसे कह रहे हैं, इसके चलते कई उद्योग पनप गए। एक और साथी कहते हैं कि हमारे जमाने में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, लड़कों का खूब जन्मदिन मनता था, विधि विधान पूजा पाठ करते थे, गुलगुले बनते थे, पड़ोसी महिलाएं और परिवार के लोगों को बुलाकर खान पान होता था, गुलगुले बांटे जाते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में केक काटने का चलन नहीं था, सादगी और अपनेपन से मनाते थे, माता पिता बच्चों को सुबह सुबह आशीर्वाद देते, माथे पे तिलक लगाते, मिठाई खिलाकर शुभकामना देते, और जिसका जन्मदिन होता सबसे पहले सभी बड़े लोगों को शीश नवाकर प्रणाम करता और नए कपड़े पहनता, घर में खीर पूड़ी या बच्चे के का कुछ भोजन बनता, अन्य सभी छोटे बच्चों को भोजन करवाया जाता और हंसी खुशी का माहौल परिवार में रहता है, समय दिखावा कम और संस्कार अधिक होते थे, बड़ों का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और छोटे छोटे पलों की खुशी ही जन्मदिन की सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी घर पर ही उनके पसंद का खाना बनाकर उनके दोस्तों के साथ मनाते थे, उनके मित्र भी वैसे ही थे, आज अब बड़े होने पर भी हमारे घर यही क्रम है, वे इसी बहाने हमारे शहर में आते हैं तो फोन पर बातचीत नहीं आते हैं तो फोन पर बातचीत करके बधाई तो हम दे ही देते हैं।
0: हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहन के बड़ों के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, मंदिर जाते थे, स्कूल में सभी को छोटी चॉकलेट बांटते थे, लेकिन इनका जन्मदिन आता था 31 मई को वेकेशन में, तो ये सबकी चॉकलेट खा जाते किसी को नहीं देते थे तो इनका जन्मदिन खास हो जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि माँ जो है ना खीर पूरी बनाई जाती थी, उसका मुख्य आकर्षण रहता था, मेहमानों का तांता लग जाता था, पड़ोस

0: के बच्चे रिश्तेदार सुबह से ही बधाई देने आते थे बिना किसी गिफ्ट के। मासूमियत भरी थी, दोस्तों से मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट, लिपस्टिक, चॉकलेट या इडली स्टिक की खुशबू होती थी। और बहुत सारे पार्टी गेम्स भी खेलते थे, म्यूजिकल चेयर वगैरह, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं।
1: और एक साथी कह रहे हैं कि फोटो खींचने के लिए रील वाला कैमरा होता था जिसकी फोटो डेवलप होकर कई दिन के बाद आती थी, लेकिन वो पल अनमोल होते थे। ड्रेस कोड तो कुछ होता नहीं था, नई ड्रेस पहनने का उत्साह होता था जो अक्सर पूरे साल के लिए खास होती थी। पुराने दिनों के जन्मदिन में दिखावा कम, अपनापन ज्यादा था। आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में भले ही सेलिब्रेशन शानदार हो गए हों, लेकिन वो पुरानी सादगी और दिल से दी गई दुआएं अब कम ही मिलती है।
0: तो पुराने वो दिन हमें याद करके बहुत सुकून मिलता है और एक गाना सुन के भी हमें सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आधी रात तो नहीं हुई है, लेकिन जाने का समय जरूर हो गया है।
1: तो लेते हैं इजाजत आप सभी को, सोनाली पाठक
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और इन सबसे पीछे छिपे हुए एक बहुत ही भोली और बहुत ही समझदार शख्सियत के मालिक मनोज कुमार, जिनका फिल्मी करियर लगभग 4.5 दशक पुराना है और आज भी मनोज कुमार जी के विचार, उनकी सोच इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस आज के युवा के प्रति उतने ही मायने रखती है जितने की उनकी फिल्में। उन्होंने हमेशा ही एक सोच समझ के एक दायरे को बांधते हुए फिल्में तैयार की हैं और एक अलग ही सोच उनकी फिल्मों से झलकती रही है। मनोज कुमार जी का सफर कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी फिल्मी इनिंग कैसी रही और आज वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया को लेते हैं, देश को लेते हैं, समाज को लेते हैं और इंसानियत को लेते हैं, सारा कुछ हम उनकी जबानी जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जी, सेल्यूलॉइड के सितारे में आपका स्वागत है।
2: रविराज जी, आपने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है।
1: मैं तो प्रशंसा ही नहीं कर सका, जिस तरीके का दौर आपने जिया है, जिस तरीके की सोच आपने दी है, जिस तरीके की समझ आपने समाज को दी है,
2: भूतकाल की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या किया उसको नहीं देखना चाहता, मैं आज में जीना चाहता हूँ।
1: क्या बात है।
2: खास कोई बात शुरू करनी हो
1: तो हमारे श्रोता एक वाक्य से समझ गए होंगे कि आज उनकी जिंदगी का फलसफा क्या है और क्या देने वाले हैं इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। मनोज जी, हम तो शुरुआत करते हैं उस हरि को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मनोज कुमार में घूम गया है।
2: उस हरि कृष्ण को मैं भी मिस करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। आपने कहा कि बचपन से लेके अब तक का सफर, तो ये जो सफर है ये एक गठड़ी है, एक पोटली है जिसमें दुख सुख है, उसको ना ही खोला जाए तो अच्छा है।
1: आज आपको खोलना होगा हमारे श्रोताओं के खातिर और हम आपके चाहने वालों के खातिर जो कि जानना चाहते हैं मनोज कुमार को और ज्यादा और ज्यादा।
2: उस व्यक्ति का बचपन क्या होगा जिसकी उम्र में 10 साल में पार्टीशन हो गई, लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गए, तो 10 साल की उम्र में जिस पे ये बात बीत जाए आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज्यादा भावुक हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख दर्द होंगे। तो उस पोटली को कि दुख ना याद करते हुए मैं कहता हूँ कि जिंदगी का जो सफर अब तक बहुत अच्छा गुजरा। कभी सोचा नहीं था कि प्रभु इतनी कृपा करेंगे। मुझे बचपन में फिल्में देखने का शौक था, सभी को है और सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे एक न्योता आया, मैं बम्बई आ गया। फिर उसके बाद काफी स्ट्रगल हुई। मेरी पहली अपीयरेंस जो है पर्दे पे वो एक 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे की थी। मैंने एक एक्स्ट्रा से शुरू किया, वो फिल्म फैशन थी। तो हरि कृष्ण से मनोज कुमार बनने में बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी।
1: अच्छा, बचपन कैसा रहा बताइए, कि वो जो 9 साल 10 साल के जो पहले के दिन थे, जब पार्टीशन के पहले के उन दिनों आप किस तरीके से अपनी शरारतें वगैरह

0: हरी के पास थी तो किस तरीके की शरारतें हुआ करती थी, या कितना संजीदा था हरी?
1: संजीदा इतना लाहौर में नहीं था जितना दिल्ली आके हो गया था। मैं जो हालात गुजरे उस वक्त परिवार पे, तो उससे कुछ ज्यादा संजीदा हो गया। तो जिसका आउटलेट मुझे मिला स्पोर्ट्स में, मैं हॉकी और क्रिकेट अच्छे लेवल पे दिल्ली में खेल लेता था। जब शौक आया कि एक्टर बनना है, बंबई जाना है, तो 1956 में मैं जब बंबई आया तो दो सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। उसके बाद प्रभु ने इतना दिया, मैं उसको बोनस समझता हूँ। इसीलिए मैंने, जबकि मेरी उम्र नहीं थी, लोग डराते थे कि डायरेक्शन में मत जाओ, देखो राज कपूर सभी नहीं बन सकते, प्रेमनाथ जी का क्या हाल हुआ, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर का जो हरि कृष्ण था वो उसमें बड़े वलवले थे। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, अब इस माध्यम से मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, धर्म के प्रति जो दे सकूं फिल्मों के द्वारा वो दूं। तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, पता नहीं कौन कौन सा टर बन गया, मुझे तो इतना ही याद है। बाकी मेरी फिल्में शुरू में चली नहीं थी। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शशि, इसको मैं शादी से पहले जानता था, हमारा लव मैरिज भी कह सकते हैं आप। से जब 3 लाख रुपए हो गए तो शादी भी कर ली, और शादी के बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता, और ये मेरे जीवन की पहली सफल फिल्म और सिल्वर जुबली फिल्म थी।

0: मनोज जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज को विस्तार पूर्वक बताएं, खास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने तय किया कि हाँ मुझे फिल्मों में ही अपना भविष्य ढूंढना है।
1: देखिए, मैंने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म देखी थी जुगनू, उसमें नूरजहां और दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब का नाम उसमें शायद सूरज था। उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, घर आ गए। फिर कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मेरे मामू मुझे मैजिस्टिक टॉकीज दिल्ली में फिल्मिस्तान की शहीद फिल्म देखने ले गए। तो जब बाहर पोस्टर देख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, मामा ये सूरज है। वो कहते ना ये दिलीप कुमार है। मैं कहूं ये सूरज है वो वाला जो मर गया था। वो बोले नहीं देख, पढ़, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार फिल्म शहीद में। मैंने फिल्म देखी, वो आदमी फिर मर जाता है। तो मैं हैरान परेशान कि एक आदमी दो दो बार कैसे मरता है। वो मेरे चचा का कत्ल हो गया था, तो कुछ मैं कुछ दिन ये सोचता रहा कि शायद वो जिंदा आ जाए ताकि वो भी दूसरी बार मरेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फिल्मों से लगाव जुड़ा, फिर लगा कि माध्यम बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, पारिवारिक व्यवसाय था?
1: रिफ्यूजी कैंप में भी हम जब थे तो सेल्फ सपोर्टिंग कैंप में थे, जिसमें खाना पीना आदमी अपने खुद खरीदता है। एक्चुअली अगर सब कुछ आप कारखाने फैक्ट्रियां जमीनें छोड़ के आ जाएं तो दिल्ली में आपको कुछ लाल किले का या रामलीला ग्राउंड थोड़ी दे देगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: भूखे नंगे भी नहीं थे, गुजर अच्छी थी।
0: जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कोई गीत याद करें?
1: गीत तो जी पहले ही वो गीत हम गाया करते थे जुगनू देखने से पहले, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।

0: विनोद जी, आपने बताया आपने बचपन के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही और स्कूल में जब आप जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था और दिलीप कुमार को पर्दे पर मरते हुए देखा और उसके बाद आप में एक कलाकार तैयार होना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है।
1: चूंकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे तो मेरे पिताजी ने साथ में दिल्ली के गांव पड़ता था नांगलोई वहां डाल दिया। वहां हिंदी माध्यम था तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था तो कुछ चार एक महीने वहां पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब्जी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं वहां पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूं, लेकिन मैं कब फेल हुआ कब पास हुआ कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था मैं समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा क्यों भाई क्या मार्क्स आए पेपर कैसा हुआ ना। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बंबई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकते

0: खत में वो लिखा हुआ था, लेकिन चार लास्ट की लाइनें जो है मुझे याद हैं। सन आई हैव फुल फेथ इन माई ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स एंड रिमेंबर सन दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड।
1: क्या बात है।
0: तो यही विश्वास मेरा मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है, ब्लंडर नहीं कर सकता। बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्रोन नहीं हो सकते, अगर ड्रोन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते।
1: अच्छी बात कही आपने। आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको रहा है और आपने जैसा कि बताया कि 1,00,000 रुपए आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते थे, अपने भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: जिन दिनों मुझे बम्बई आना था, पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफी खस्ता थी। मुझसे एक छोटी बहन थी, दो बहनें और एक भाई, वो भी स्कूल में ही थे कि पंजाब से बटाला शहर से पिताजी के दोस्त आए, मिस्टर टकसाली साहब। वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। मैंने उनको कहा चुपके से कि अंकल आप बताइए मत, ये मैं ट्राई करूं। उन्होंने कहा भाई हाँ कर ले। पहले तो डांटा कि गोस्वामी जी का बेटा होके ये काम करेगा, ये तो एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहां गया तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए और एक दुकान अच्छी थी उसपे बहुत भीड़ थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए, तो सरदार साहब ने मुझे देखा कि नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मैं ये ट्राई करने आया हूँ। उन्होंने खोल की बॉडी देखी, पसंद किया और 2 महीने मैंने काम किया और बटाला से टकसाली साहब ने खत लिख दिया कि और ऑर्डर नहीं लो, मैं इतने ऑर्डर में भुगतान कर सकता। तो 2 महीने में मैंने 29,000 रुपया कमीशन कमाई थी। फिर पिताजी कहते थे कि साइकिल पे क्यों जाते हो, 4-व्हीलर पे जाओ, मेरा शौक फिल्में देखना, फोटो भी खिंचवाओ, कमीज भी अच्छी पहनो। तो वो मैं साइकिल पे जाता था, वो जो पैसे थे वो बच जाते थे और मैं शशि के साथ पिक्चर भी देख लेता था। तो साइकिल चला के जो पैसे बचते थे उनसे मेरा ये मनोरंजन का काम हो जाता था।
1: जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शशि जी से मुलाकात रही।
0: मुलाकात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं रवि करके, मैं उनके यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने जाया करता था, वो मेरे क्लास फेलो थे। आंखों ही आंखों में कहते हैं ना बात हो गई, जैसे पंचोली साहब का एक गीत है, नैनों के बांध की रीत अनोखी, बांध चले और नैन ना देखें, कब क्या हो गया ये पता नहीं, हुआ जरूर है।
1: बड़ी रोचक कहानी है। तो ये क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय जब आपने शशि जी को पहली बार देखा?
0: 15-16।
1: वाह, और पहली नजर का प्यार।
0: हाँ, लेकिन बातचीत करने में 1 साल लग गया था, हेलो भी नहीं कर सकते थे।
1: वाह, और उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, फिर आप इतने बड़े कलाकार बने, इतने बड़े सितारे बन गए।
0: फिर मैंने पिताजी को यहाँ से इशारतन एक इशारा दिया था, तो वो जानते हैं, पिता तो जानते हैं सब कुछ, वो उनके यहाँ चले गए तो 1 मिनट में बात तय हो गई। माता पिता ने भी नहीं कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने 22 साल फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए मेरे पिताजी से घूंघट निकाला।
1: क्या बात है। वाह,
0: वो बीमार थे तो उन्होंने खुद उठवाया कि तू मेरी बेटी है, हमने कभी चाहे ना था कि घूंघट निकालो, मगर उसने परंपरा के अनुसार ये काम किया।
1: और आप अपने प्यार को जब एक सितारे के रूप में स्थापित हो जाने के बाद जब आपने उनसे विवाह किया तो उस समय का अनुभव कैसा रहा? और उस समय तक तो आप जाना माना नाम बन चुके थे। और
0: ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पांव हमेशा धरती पे रहे, ना मैं गर्दन उठा के चला हूँ। ये फैक्ट है, मैं चलता भी हूँ तो गर्दन मेरी नीचे होती है। मुझे कोई अंतर नहीं लगा कि मैं स्टार बन गया हूँ, ना मैं स्टार की तरह रहा कभी, ना मैंने कभी सेक्रेटरी रखा, ना स्टार वाली पार्टियां की। अपना अपना मेंटल एटीट्यूड भी होता है।
1: कोई अच्छा सा गीत याद आ रहा हो आपको?

0: मनोज जी, बचपन में जो सबसे जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो पूरी जिंदगी भर रिफ्लेक्ट करता है, कभी माता का प्रभाव होता है, पिता का प्रभाव होता है, या कोई ऐसी शख्सियत होती है आपके आसपास की जिसको आप आगे लेकर चलते हैं पूरी जिंदगी ता जिंदगी, अपनी माँ के बारे में भी कुछ बताएंगे?
1: बात ये कि मैं ज्यादातर अपने ननिहाल में रहा, माँ मेरी कुछ बीमार रहती थी ज्यादा। जो धार्मिक भावनाएं हैं या जो रुचि पड़ी वो अपनी माँ और अपनी नानी से ली मैंने। बाकी जहां तक एक कंट्रोलिंग, एक यूनाइटेड फैमिली रहना, एक डिसिप्लिन पर्सन रहना, वो मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा। क्योंकि 13 अगस्त 1947 के करीब खबर मिली थी कि मेरे चाचा जी का कत्ल कर दिया गया। 25 साल भी एज नहीं थी उनकी।
0: ये विभाजन की त्रासदी
1: जी। और पिताजी नढाल थे, दीवानों से सर मार रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठे, मुझे 6 बजे उठाया, चलो तैयार हो जाओ नहा के। कहा 15 अगस्त 1947 में मुझे मेरे पिताजी लाल किला ले गए और मैंने झंडा देखा, मैंने लाल किला भी देखा। मुझे उस वक्त लगा, एक थोड़ी सी सोच ऐसी लगी कि कल तक रात तक मेरे पिताजी का ये हाल था, आज सुबह ये भावना है, ये झंडा, ये आजादी, ये इतना कीमती है कि एक आदमी अपने दुख दर्द भूल गया, ये कहीं मेरे दिल में बस गया। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि सुनो बैठो, ये संस्कार सीखो, ये बात सीखो, कभी नहीं कहा। इनडायरेक्टली बातों बातों में कह जाते थे।
0: देश प्रेम का जो जज्बा था वो मेरे ख्याल से वो बीज था,
1: वो बीज था। हालांकि लाहौर में जुलूस निकलते थे, जब INA का केस चल रहा था लाल किले में, तो जुलूस में शामिल हो जाता था कि लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लों शाहनवाज, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं थी। वो एक बच्चे सारे हैं तो मैं भी शामिल हो जाऊं। लेकिन जो असली बीज पड़ा एक सोच का, वो 15 अगस्त को पड़ा,
0: देश की आजादी के दिन ही। तकरीबन 13 साल के रहे हैं आप।
1: उस दिन एक और घटना घटी कि पानी पिया मैंने तो उसने मुझे टक्का मांगा। मेरे को तो लगा पहाड़ गिर गया मेरे सर पे। हम तो पानी पिलाने को पुण्य समझते हैं। मैंने पिताजी से शिकायत की कि आदमी पानी के पैसे मांग रहा है। कहते यार पानी, हम तो दरिया के दरिया छोड़ आए हैं आजादी के लिए, तो पानी के 2 पैसों को रो रहा है, हम तो दरिया छोड़ आए।
2: विविध भारती पर आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सेल्यूलॉयड के।

0: सितारे और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्माता लेखक और निर्देशक मनोज कुमार।
1: मनोज जी हम चलते हैं आपके फिल्मी सफर की तरफ और आपने पहले छोटी छोटी भूमिकाओं के से शुरुआत की अपने अभिनय की
2: जी।
1: तब क्या आपने सोचा था कि आपका जो कलाकार है वो एक मनोज कुमार के रूप में विशाल एक वृक्ष का अख्तियार कर लेगा?
2: जितना हुआ उतना नहीं सोचा था। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैं बन जाऊं।

0: तब क्या आपने सोचा था कि आपका जो कलाकार है वो एक मनोज कुमार के रूप में विशाल एक वृक्ष का अख्तियार कर लेगा?
1: जितना हुआ उतना नहीं सोचा था। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन परमात्मा इस स्टेज पे ले आएगा। हो सकता है ये जगह, ये मकाम जहां मैं पहुंचाऊं आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। कि जिंदगी में पहली फिल्म देखी दिलीप कुमार की, कि ये दिलीप कुमार है, ये सूरज है, ये मर जाता है, तो वो 10 साल के बच्चे के कोरा दिमाग, कोरा दिल, उस पे दिलीप कुमार का नाम लिखा गया। एक वक्त वो आया कि दिलीप कुमार साहब फिल्म बना रहे थे, बना कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन कहा हमेशा यही जाता है कि दिलीप साहब की फिल्म है, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म आदमी में लिया। तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूंगा, ये तो हुआ, लेकिन ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि मैं एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर जाके दिलीप कुमार साहब को साइन करूंगा और वो सेट पे मेरे लिखे वो डायलॉग बोलेंगे, वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे, इतना नहीं सोचा था। इतना कुछ हो गया, इसके आगे मैं भगवान से मांगूं तो इतने मांग सकता हूं कि भाई अब तक अच्छा जीवन कटा, आगे भी कृपा रखना, और तो कुछ मांगने को है नहीं।
0: जबरदस्त बात कही आपने। आदमी फिल्म का कोई अगर गीत आपको याद आ रहा हो?
1: उस फिल्म में एक गीत था, दिलीप साहब और मुझ पे फिल्म आया गया था, कैसी हसीन ये बहारों की रात।

0: रोता हूँ। इससे पहले कि मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के सफर के बारे में हम आगे बढ़ें, हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आपने मनोज कुमार नाम कैसे रखा अपना।
1: ये जिस हरि या हरि कृष्ण गोस्वामी की बात करते हैं, जब वो 11 साल का था या 12 साल का था, उसने फिल्म देखी, उस फिल्म में भी दिलीप कुमार साहब थे और उसमें उनका नाम मनोज था। ये मैं शाबाश देता हूँ अपने बचपन को कि उसी वक्त ठान लिया था कि अगर फिल्म में आया तो ये ही नाम रखूंगा।
0: जिस तरीके से दिलीप साहब की बातचीत हो रही है, आप जाहिर है हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि मनोज जी की जो शख्सियत है उस पर दिलीप साहब का जबरदस्त प्रभाव रहा है, आपके अभिनय में भी वो कहीं कहीं झलकता रहा है, तो ये डेलिबरेटली था कि मतलब आपने जान करके इसको लिया?
1: नहीं, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं कोई मतलब कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैं बेगुनाह हूं। एक तो जो आपका आइडियल रहा हो तो शायद वो टेम्परामेंट कहीं आ जाता है। दिलीप साहब का जो टेम्परामेंट है वो अंडर प्ले का था। कुछ मेरी जाती जिंदगी भी ऐसी थी जो इंट्रोवर्ट और टिमिड स्लो ऐसे, तो क्योंकि आपने फिल्म आदमी देखी होगी, आदमी में दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था, उसमें दो दिलीप कुमार नहीं थे।
0: बिल्कुल सही।
1: क्रांति में आपने देखा दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था। मेरा बार बार ये कहना कि दिलीप साहब की फिल्म देखी, दिलीप साहब से मुतासर हुआ, दिलीप साहब से ये हुआ, वो शायद इस रोशनी में लिया जाता है कि मैं दिलीप साहब की कॉपी करता हूँ। हो सकता है कोई मैनरिज्म किस वक्त मिल जाए।
0: तो इसमें फिर किसी की एक्टिंग की बात नहीं आ जाती है कि ये किसी से कॉपीड है या किसी को ध्यान में रखते हुए, किसी को प्रेरणा बनाते हुए की गई एक्टिंग है, बल्कि मनोज कुमार तो अपने आप में एक अलग संस्थान भी है। और आज तो हम बात करते हैं जब अलग अलग मैनरिज्म की, अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग के, तो एक स्कूल मनोज कुमार का भी रहा है जिन्होंने की एक अलग तरीके का एक शेड दिया है अभिनय को, एक उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। शायद शहीद से और उपकार के दौर से आपका जो वो आधा चेहरा वाला जो वो सिस्टम रहा है और आंखें बंद करने वाला जो हिसाब किताब रहा है, इसके बारे में भी हमें खुलासा करके कुछ बताएं।
1: जहां तक आंखें बंद करने का सवाल है, ये मैंने डेलिब्रेट कभी नहीं किया, मैंने बिल्कुल सीन को नेचुरल सीन समझ के किया। शायद अगर कोई सोचने वाली बात आ जाए तो शायद आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे कि आप बगैर आंखें बंद किए छींक नहीं सकते, तो अगर सोच वाली बात आ जाए तो या तो आदमी आसमान की तरफ देखेगा, नीचे देखेगा, या आंखें बंद करके कुछ सोचने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा मैनरिज्म करूंगा, मैं हाथ ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। एक टेक होती थी तो उसमें मैं कुछ करता था, दूसरी टेक होती थी उसमें मैं कुछ करता था। मैंने करेक्टर को निभाया है, सीन को निभाया है, मैंने कतई ध्यान नहीं दिया कि तू मनोज कुमार है, तूने ये करना है, तूने ये करना नहीं। मेरी तो चिंता रहती थी कि दूसरे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
0: मनोज कुमार के भीतर एक अभिनेता रहा है शुरू से, ये निर्देशक के रूप में कब परिवर्तित होता चला गया या निर्देशकीय रास्ते पर कब चलने लगा और फिर लेखक ने कब जन्म लेना शुरू कर दिया?
1: लेखक तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ,
0: शुरुआती दौर में आपने बताया था।
1: बाकी मैंने कहानी लिखी हुई थी शहीद, जो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव इनके कॉमरेड्स के ऊपर थी। तो मेरे दोस्त हैं केवल बी कश्यप साहब, वो पीआरओ का काम करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा यार मैं थक गया हूँ फोटोज खींच खींच के और ऑफिस में जाके कि इसकी फोटो छापो उसकी फोटो छापो, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सेलेबल हीरो जो कहते हैं कि जिसकी पिक्चर बिक जाए उस पदवी तक आ गया था। हाँ, मैंने कहा बनाओ फिल्म। मैंने कहा साधना जी हैं, सायरा जी हैं, आशा पारेख है, किसी को लेके बना। कहता नहीं, मुझे बनानी वही फिल्म है जो तूने सुनाई थी कहानी। मैंने कहा केवल पहली फिल्म बना रहा है, इससे पहले दो फिल्में भगत सिंह जी पे बन चुकी हैं जो चली नहीं है, ये तो जोखिम लेगा।

कहता यार कुछ नहीं। मैंने कहा लेना तो फिर बना लो। तो ये तय हुआ कि वो शहीद बनाएंगे। फिर हमारे एक सहयोगी थे मेरे एस राम शर्मा, वो मंझे हुए थे, उनको बोला भाई आप डायरेक्शन में आ जाओ। तो केवल साहब उन दिनों शंकर जयकिशन साहब, ओपी नैयर साहब और रवि साहब इन म्यूजिक डायरेक्टर्स की पब्लिसिटी किया करते थे। तो केवल जी के लिए ये था कि यार ये नहीं होगा तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक बिकता है, शंकर जयकिशन बिकते हैं, ओपी नैयर साहब बिकते हैं, रवि साहब बिकते हैं। मैंने कहा केवल बात बहुत सिंपल है, अगर ये फिल्म बनानी है तो इस फिल्म के लिए मुझे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम धवन चाहिए। कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा वो गाने लिखते हैं। कहने लगे यार एक दो गाने ले लेंगे उनसे? मैंने कहा नहीं, ये फिल्म अगर बनानी है तो इसमें, कहता उन्होंने कभी म्यूजिक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तू कैसे जानता? मैं कहा मैं जानता हूँ, ये बड़पन है केवल का कि उसने मेरी बात मान ली। हम प्रेम धवन साहब के घर गए, उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने दो दिन मांगे। मैंने कहा नहीं, अगर आपने म्यूजिक नहीं देना तो ये फिल्म नहीं बनेगी। उन्होंने हाँ की और शहीद सब नए लड़कों के साथ बनी और प्रेम धवन साहब ने म्यूजिक दिया, म्यूजिक जो आज भी चलता है। और डायरेक्शन का क्या हुआ, चूंकि लिखे हुए सीन मेरे थे, कहानी सब कुछ मेरे पास थी, तो पैसे की बहुत दिक्कत थी। हमको अक्सर दो यूनिट बनाने पड़ते कि इधर ये कर लो, तो एक तरफ मुझे जाना पड़ा, मैं गया नहीं उस रास्ते पे, मुझे जाना पड़ा। जब वो मैं डायरेक्शन करने लग गया तो फिर मेरे अंदर डायरेक्टर ही आ गया।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर उस नजर

फिर शहीद बनने के बाद जब दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। वो 3 घंटे उन्होंने फिल्म देखी, तालियां बजाई, उसके बाद स्पीच भी दी। फिर मुझे बोला कि सुबह सबको घर पे लेके आओ। बाकी तो कुछ लोग जा चुके थे तो मैं उनकी कोठी पे पहुंचा तो जो किचन गार्डन सा होता है उसमें खड़े थे। तो बहुत शाबाश दी, बहुत कलेजे से लगाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बचपन में ले गए, मैं उसके बाद सोया नहीं सारी रात, वही जीवन में चला गया था। तो ऐसे ही उन्होंने मासूम नजरों से देखते हुए

आके सुनो, मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, मैंने कहा जी बन जाएगी। मैंने सीताराम साहब से कहा कि मुझे डायरी और दो तीन बाल पेन ले दो। मैं डीलक्स से चला और सोया नहीं, 24 घंटे में उपकार लिख

0: मैंने स्क्रिप्ट में, मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने स्क्रिप्ट पूरा लिखने में कभी 3 से 4 दिन से नहीं लिए।
1: हम चाहेंगे कि शशि जी भी हमारे साथ ज्वाइन करें और मनोज जी के बारे में, जो एक घर में एक अभिनेता और निर्देशक और लेखक और निर्माता के इतने सारे जो आयाम हैं उनको छोड़कर किस तरीके से मनोज जी पेश आते हैं।
0: नहीं, इससे पहले कि आप उनसे बुलवाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे सीन पुख्ता क्यों होते हैं कि पहले ये सेंसर करती है, पास करती है, अगर इसको कोई चीज नहीं अच्छी लगेगी तो अटक जाएगी। जब मैं समझूंगा कि ठीक इतना अटक गई है, मेरे को समझाने में कामयाब हो जाए तो मैं इसकी मान लेता हूं, और अगर गलत है चीज जो इसका सजेशन है वो ठीक नहीं है, अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं तो ये मान लेती है। बाकी मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता, क्या काम किया है, इसका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है।
1: यानी जो कहा जाए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत शशि जी हैं आपके पीछे।
2: घर में तो ये बिल्कुल घरेलू ही रहते हैं और दिनचर्या भी इनकी जैसे सुबह आम आदमियों की तरह होती है, वैसे ही सुबह उठते हैं तो योगा करते हैं, सैर करने जाते हैं, सादा भोजन लेते हैं। भोजन में भी ज़्यादातर इनका यही होता है, मूंग की दाल और दूधी की सब्जी, दो चीज़ें इनकी फेवरेट है।
1: और स्वभाव किस तरीके का है, कि जिस तरीके से बोला जाता है कि एक सफल कलाकार अगर खासतौर से होता है तो बहुत टेम्पर्ड होते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत हाई होता है, तो घर में भी ये सब चीज़ें झलकती हैं या फिर बहुत शांति से पेश आते हैं और पारिवारिक तरीके से रहते हैं?
2: शांति से पेश आते हैं, लेकिन कभी कभी मूड गर्म भी हो जाता है।
0: कोई सुविधा जिंदगी की ना मिले ये गुजर कर लेगी, लेकिन म्यूजिक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये इसकी जान है।
1: शशि जी, आप अपने जमाने में जबरदस्त खूबसूरत भी रही हैं और एक सफल कलाकार की पत्नी भी रही हैं, कभी आपको खुद को नहीं लगा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखा जाए? खासतौर से आप, हम जानते हैं कि पूरब और पश्चिम की जो कहानी है उसके बेसिक आपके ही हैं और आपका ही एक ये महल था जो सक्सेसफुल रहा है।
2: काम करने का सवाल तो कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि पिक्चरों में तो आर्टिफिशियल एक्टिंग होती है, घर में तो हम नेचुरल करते हैं, वो एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है हमें।
1: दूसरी चीज ये जानना चाहते थे कि पूरब और पश्चिम का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से इसको आपने विजुलाइज किया, फिर उसको कागज पर उतारा?
2: मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड वो बाहर रहते थे।

हमेशा अब्रॉड में ट्रांसफर हो गई थी उनकी, तो हम हमेशा कहते थे कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ की कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसे है, बच्चे होंगे तो कैसा होगा, क्या होगा। उस पॉइंट को देख के सोच के कैसा वातावरण वहाँ का है, यहाँ का कैसा है, तो उसके ऊपर ऐसा ब्रेन ड्रेन के ऊपर कुछ आइडिया आया।

0: जी, एक निर्देशक जीवित हुआ आपके भीतर जब आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ फिल्म में, जिस तरीके से आपके शहीद के दौरान आपने बताया, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा के बाद जब आपने उपकार शुरुआत की और जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में, तो वो अपने अनुभव बताइए। उसमें आपने एक और चेंज किया था कि एक जबरदस्त या जिसके पर्दे पर आते ही लोग दहल उठते थे, ऐसे खलनायक को एक शानदार और एक बड़ी जीवंत भूमिका दी थी मलंग बाबा की। वो प्राण साहब थे जिनकी इमेज आपने तोड़ी थी और बदली थी।
1: प्राण साहब का एज ए विलन इतना भयानक रूप था कि अगर आप उनके साल देख लें और उन वर्षों में देख लीजिए, घर वालों ने किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा होगा।
0: ये बिल्कुल हकीकत है।
1: लेकिन मेरी कन्विक्शन ये थी कि एक अच्छा कलाकार उस पे स्टैंप लग जाती है, मैं इनको, ये इंसान अच्छे हैं, ये कलाकार अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि ये अच्छा रोल नहीं करेंगे। तो मेरी कन्विक्शन थी। थोड़ा सा प्राण साहब भी हेजिटेंट थे कि यार ये कैसा रोल है। और फिर उस फिल्म में एक गीत था उनके ऊपर, कस्मे वादे प्यार वफा, तो मुझे स्वर्गीय कल्याण जी भाई भी, राज खोसला साहब, ये सब कहते थे अरे क्या पागल हो गए यार, बैकग्राउंड में रख दो ये गाना, प्राण जी के मुंह से मत गवाओ। प्राण साहब जो थे वो जो रोल था उनके अंदर रच गया था।
0: वाकई उपकार का ये उपकार था प्राण साहब के ऊपर, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म का भी एक कोई गीत सुन लिया जाए।
1: बात प्राण साहब की हो रही है और मलंग बाबा की हो रही है, तो बात उस गीत की भी हुई, तो क्यों ना उसी गीत को सुनाया जाए। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का।

सेल्यूलॉइड के सितारे, अभी आप फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार से रविराज प्रणामी की बातचीत सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया रीटा रवेलो और साइमन परेरा ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा ओ हमनवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है श्रोताओं आप सबका, विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
3: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
1: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
3: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का, लिखते हैं।
3: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
3: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। NCERT उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
3: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है। 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
3: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
3: जी अजीत जी, श्रोताओं जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहु ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
1: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
3: तो श्रोताओ लगा कुछ अंदाजा?
1: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओ आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओ इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की, तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
3: तो अजीत जी पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
1: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
3: जी,
1: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
3: जी।
1: लेकिन विमलेश जी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
3: वो क्या?
1: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
3: जी।
1: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
1: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
3: जी,
1: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
3: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण

0: और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
1: बिमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
1: जी, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
0: जी।
1: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
0: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
1: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: जी,
0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
3: Oh, my name is Fly. My name is Fly.

0: Und?
1: Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
2: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
4: मौलाना अबुल कलाम आजाद

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ।
4: अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए?
3: रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
5: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने, पता है क्यों?
3: क्यों?
5: ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
5: अरे ये तो खेल है।
4: अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
5: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
3: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
5: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
3: अच्छा तो ये बात है।
0: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था।

0: उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
0: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
1: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
0: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक

0: दोबारा छापने पड़े क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
1: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
0: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
2: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
1: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था।

0: एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
1: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात ये भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
2: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
1: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना।

0: इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविय बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स सीपीआर के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती कार्यक्रम है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं इसके शेष गाने।

अभी आपने अरिजीत सिंह को सुना। गीतकार थे प्रशांत पांडे और संगीत राम संपत का था। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म याराना का गीत। गीतकार अनजान, संगीतकार राजेश रोशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: अब हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ सुनवा रहे हैं। संगीत प्रीतम का, गायिका है श्रेया घोषाल, फिल्म का नाम जब वी मेट।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरानी नहीं पुरानी। प्रस्तुत है अगला गीत, फिल्म का नाम लूटमार। गायिका लता मंगेशकर, शब्द रचना अमित खन्ना की, संगीतकार राजेश रोशन।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अल मलिक के संगीत निर्देशन में सैयद कादरी का लिखा गीत सुना। आवाज थी श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम था जहर। ये था कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

अब से थोड़ी देर में 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। 7 फौजी भाइयों के लिए लेकर आएंगे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 हवा महल में आप सुनेंगे अजीत कुमार शर्मा की लिखी झलकी चक्कर जूने का। निर्देशक हैं गुरमीत।

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे अजीत कुमार शर्मा की लिखी झलकी चक्कर जूने का। निर्देशक हैं गुरमीत रामलमीत। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार नौशाद पर। रात 10 बजे छाया गीत लेकर आएंगी ममता सिंह। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेकी।

30 मिनट पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण होगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

वंदन वार का समय होगा सुबह 6:05 पर। संगीत सरता कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं सुबह और शाम 6:45 पर। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार होंगी गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। कल आप सुनेंगे इसका चौथा भाग। 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।

है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। त्रिवेणी का समय होगा सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं सुबह और रात 9:30 पर। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम होगा।

रंग तरंग होगा दिन में 11 बजे 12:05 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा दिन में 1 बजे। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 5:30 पर। रात 8 बजे हवा महल में शांति मेहरोत्रा की लिखी नाटिका सुनिएगा आराम बड़ी चीज है। निर्देशक होंगी रूपम नारायण पांडे। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

अभी आपने जूली फिल्म में आशा भोसले और उषा मंगेशकर को सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि कल शाम 4 बजे पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनवाई जाएगी। प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।

0: कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी के साथ हम सभी फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। बंदिश जब महिलाएं रचती आई हैं तो उनमें किन बातों का ख्याल रखती हैं? भक्ति भाव, शब्द, भाषा, किस तरह से चयन करती हैं वो?
2: ऐसा है, राग की जो आवश्यकता है, हर राग का एक भाव होता है, रस अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से किस राग में बंदिश बनाने की आवश्यकता नजर आई, ये भी एक विषय है। क्योंकि अनेक कलाकारों ने बंदिश रच के रखी हुई है, लेकिन कभी कलाकार के अंदर की जो रचनात्मकता, संवेदनशीलता, जो मन के भाव उस विशेष राग के समय उमड़ते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें ऐसी बंदिश होती तो कितना अच्छा होता।
1: जी।
2: तो ये विचार को लेकर बंदिशों का निर्माण होता है। हमेशा कहते हैं कि बंदिश बनाई नहीं जाती है, बन जाती है।
1: जी।
2: तो उस भाव को स्पष्ट करने के समय उस साहित्य को लेकर भी एक अलग अलग भाव हर बंदिशकार के होते हैं, और उस राग की आवश्यकतानुरूप उसमें जो स्वरों का भाव प्रदर्शन किया जाता है, लय के साथ जो बात रखने की जो जरूरत होती है, ताल और लयकारी का समन्वय रहता है, शब्दों की बुनावट, शब्दों को रखना, ताल के अलग अलग मात्राओं के साथ जो बुना जाता है
1: जी।
2: एक साहित्य स्वर एवं भाव, उसको प्रकट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बंदिश है
1: जी।
2: तो इस तरह बंदिश करने की जो इच्छा प्रकट हुई होगी और तभी वो बंदिशें बनती गई
1: जी। तो आज की इस कड़ी में कौन सी महिला रचनाकार हैं, बंदिशकार हैं, जिनके बारे में आप जानकारी देंगे और उनकी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
2: जी जी, गान सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोनकर जी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और उन्होंने बनाई हुई बंदिशों को सुनेंगे और हम भी सुनाएंगे
1: जी।
2: किशोरी अमोनकर जी की गायकी एक विविध स्वरूपों को दर्शाने वाली मुझे हमेशा दिखाई दी है। उनकी गायकी में रस पूर्ण, भावनात्मक एवं क्लिष्ट स्वरों की अलग अलग स्वरावलियां जो श्रोताओं को अचंभित करती आई हैं
1: जी।
2: उन्होंने अपनी गायकी में, उनके घरानों की विशेषताएं तो हमको नजर आती ही हैं, लेकिन एक नया रूप देकर गायकी को संशोधित किया है। रस एवं भावनात्मकता को बहुत अधिक महत्व दिया है, रचनात्मकता, क्रियाशीलता, बुद्धिमत्ता एवं लयकारी के साथ राग की बढ़त बहुत ही कर्णप्रिय एवं सुंदर हमें दिखाई देती है
1: जी।
2: हालांकि किशोरी जी की गुरु, उनकी माँ गान तपस्विनी मोगूबाई क्रुडीकर जी से तो गायकी एवं तालीम हासिल की ही है, साथ ही उन्होंने आगरा एवं ग्वालियर घराने के अनवर हुसैन खां एवं पंडित शरद चंद्र आरोलकर जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है। भेंडी बाजार घराने की अंजनीबाई मालपेकर जी से भी आपने कुछ बातें सीखी हैं। स्वरों के बीच मींड या उतार चढ़ाव की तकनीक, इसका श्रेय भी वो अंजनीबाई मालपेकर जी को देती हैं।
1: बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। तो अब बताइए आप कौन सी रचना उनकी प्रस्तुत करेंगे?
2: राग अहिर भैरव में एक उनकी बनाई हुई रचना है नैनवा बरसे, वो अनुजा आपको सुनाएंगी। उसके पहले मैं राग अहिर भैरव का थोड़ा सा आपको परिचय बता दूं
1: जी।
2: इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये भैरव ठाट का राग है। इसे प्रातः काल में गाया बजाया जाता है। इसमें ऋषभ और निषाद स्वर कोमल लगते हैं। इसका वादी मध्यम एवं संवादी षडज है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है और इसके पूर्वांग में भैरव एवं उत्तरांग में काफी का मिश्रण हमें दिखाई देता है। तो राग अहिर भैरव का चलन मैं आपको बताती हूँ
1: जी। स्वागत है।

0: राग अहिर भैरव पर आधारित ये बहुत ही सुंदर बंदिश आपने प्रस्तुत की।
1: अब हम किशोरी जी की गाई हुई और बनाई हुई बहुत प्रचलित राग भोपाली में उनकी एक बंदिश आपको सुनाते हैं, सहेला रे आ मिल गाएं।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अजीत कुमार शर्मा की लिखी झलकी चक्कर जूते का, निर्देशक गुरुमीत रामल मीत।
1: वड़ी इधर काहे को घुसा चला जाता है रे, अरे रुको रुको, वड़ी हम कहता है रुको जी, अरे एक मिनट रुको। हाँ तुमको किससे मिलना है भाई?
2: ओ लाले की जान हुई, हमको सेठ से मिलना है, समझे? हमको दो को मत हुए
1: सेठ से, मगर सेठ से क्यों मिलना है?
2: वो ये हम तुमको नहीं बताएगा, पहले हम सेठ को मिलेगा।
1: साई यही तो मैंने सुन लिया कि तुम सेठ से ही मिलने आया है, मगर काहे के लिए बोलो नहीं?
2: ओ हम कहा ना भाई कि ये हम सेठ को ही बताएगा।
1: थोड़ी साई तुम सेठ से इस वक्त मत मिलो, वो तो पहले से ही बहुत दुखी है।
2: ओ तो तुम पहले ही सेठ से मिल चुका है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जब आया हूँ तो हम भी सेठ से मिलकर ही रहेगा।
1: बूढ़ी साई मैं ही तो हूँ किस्मत का म्यारा सेठ बहु नानी।
2: लाहौल बिला खूबत, ये आप क्या बोलते है, आप ही सेठ जी है? और नमस्ते ओ सेठ जी, माफ करना ओ सेठ जी, हम आपको पहचान नहीं पाया जी।
1: बूढ़ी साई तुम्ही क्या, अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा।
2: ओए
1: अब मैं पहले वाला सेठ बहु

0: हो गया साईं।
1: सेठ जी ओए, आप तो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो रहा है। ओ जी, हम तो आपसे नौकरी।
0: हाँ, अब तो मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी साईं। अब क्या होगा,
1: ये तो रोने लगा। अरे चुप हो जाइए शेख साहब जी, चुप हो जाइए।
0: मेरे पास अब रखा ही क्या है साईं, दुकान का सारा माल तो चोर उठा कर ले गए।
1: ओ सेठ साहब, आप समझे नहीं जी। अरे हाथी चाहे कितना भी दुबला क्यों ना हो, मगर हाथी तो हाथी ही रहता है सेठ साहब। और फिर सेठ जी, हम आजकल बेकार चल रहा है, हमारा कुछ तो ख्याल कीजिए सेठ साहब। हम बहुत बहादुर आदमी है सेठ साहब।
0: क्या बोला उन्हें, बहादुर?
1: अरे अरे अरे अरे, आप मुझे ऐसे शक की निगाहों से क्यों देखता है रे सेठ? अगर नहीं देनी है नौकरी तो मत दो। हम किसी दूसरे सेठ का तलाश में जाए।
0: अरे रुको रुको रुको, मैंने कहा। अरे मणि, तुम तो चली दिए, एक मिनट रुको। अरे पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक देख तो लूं कि तुम सचमुच बहादुर हो।
1: तो जनाब अली, ये बात है, लो लो देख लो, देख लो, हमको जी भर के देख लो।
0: देखने में तो बड़ी बहादुर लगते हो।
1: बहुत बहादुर जी, बहुत बहादुर। अच्छा
0: भाई, तुम किसी भागते हुए चोर को पकड़ सकते हो? नहीं।
1: हाँ जी हाँ, क्यों नहीं पकड़ेगा। और जी सेठ साहब जी, क्या मजा लेगी कि चोर मुझसे छूट कर भाग जाए।
0: और अगर चोर से उठा पटक हो तो भी?
1: अरे सेठ जी, हम अपने इलाके का नामी पहलवान रह चुका है।
0: नामी पहलवान?
1: बहुत कुश्तियाँ जीता है हमने।
0: बहुत?
1: हाँ हाँ, बहुत बहुत कुश्ती जीता है।
0: तो फिर भैया, हमारी दुकान की रखवाली बड़ी तुम ही कर लो भाई। वही चार बार चोरी हो चुकी है वहाँ, मुझे बदमाशों ने से बिल्कुल कंगाल बना दिया। अब की बार फिर कोशिश करके कुछ माल भरते हैं दुकान में।
1: जरूर जरूर।
0: अरे भैया, मुझे तुम्हारी नौकरी का भी ख्याल रखना है। नहीं
1: तो अब हमको चौकीदारा करनी ही पड़ेगी।
0: हाँ भैया,
1: आओ फिक्र मत करो शेर साहब जी। शेर जी, मगर मगर बात ऐसे ना।
0: तुम घबराओ नहीं साईं, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें खूब इनाम देंगे, खूब इनाम देंगे, खूब।
2: Oh, my God.

0: आओ चूर बच्ची, आओ आओ आओ, आज तुम आकर तो देखो, ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा लगता है कि चूरा आ गया है। उधर से चिप कर जा रहे हो है? अच्छा बच्चू चूर, आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। हाँ, हम पठान का बच्चा है री, हम तुम्हें पीछे से अचानक अचानक पकड़ूंगा री। हाँ, आप बचकर आई जाएगा बच्चू। अरे अरे तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ रे,
1: मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
0: ललक जान, वो सेठ साहब हमको ढेर सा इनाम देगा।
1: सेठ के पास मर गए, मर गए। अच्छा भैया चौकीदार जी, तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे?
0: ललक जान इसलिए कि पहले वो तुम्हारी खूब जमकर पिटाई करेगा, और उसके बाद वो तुमको पुलिस में देगा, पुलिस में।
1: पुलिस? अरे बाप रे, अब अब क्या होगा?
0: अरे मेरे भाई, जो होना होगा वो तो सेठ के पास होगा। चोरी करने का पूरा मजा मैं नहीं तो यहीं चका दूंगा तेरे को, यहीं।
1: हाय चौकीदार भैया, अरे अरे मुझे ऐसे घसीट कर मत ले चलो रे।
0: अभी घसीट कर नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर ले जाऊंगा, समझा? तू तू चलता है चुपचाप कि नहीं?
1: बाप रे, जरा रुक कर मेरी बात तो सुनो।
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता।

0: रुकने का। अबे बचा जो भागना है ना, चलते चलते भागो।
1: अगर अगर तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे तो पहले वो मुझे मार मार के मेरा मेरा हुलिया बिगाड़ देगा।
0: जानी जिगर, हुलिया तो बेटा तुम्हारा ऐसे बिगड़ेगा, ऐसे बिगड़ेगा कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकेगा। सेठ पहले से बहुत ही बुरी तरह जल भुना बैठा है तुमसे।
1: बाप रे, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाँ बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। पुलिस की मार से तो भूत भी भाग जाता है। अरे फिर तुम किस खेत की मूली हो?
1: हे भगवान, पहले सेठ की मार, फिर पुलिस की पिटाई, फिर केस मुकदमा, अरे मारे गए रे।
0: हाँ बेटा, ये सब तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना था। जाने चिकन,
1: अरे मुकदमे के बाद जेल भी तो हो गई, आए मर गया
0: होगा?
1: जेल की चक्की फिर पत्थर तोड़ना आया, मेरा तो दम निकला जा रहा है।
0: और करो बेटा जान चोरी और करो।
1: अगर पहले ये सब सोचा होता तो फिर रोना किस बात का?
0: बच्चा, चोरी करने से मैं रोना नहीं आया था तुमको है? अरे अब बेटा जैसा किया है ना वैसा ही तो भरना पड़ेगा।
1: चौकीदार भैया, आप क्या बताऊं, तुम हो तो चौकीदार पर बड़े दयालु नजर आते हो।
0: कसम हम है।
1: बस भैया, तुम मेरी मेरी एक इच्छा पूरी कर दो।
0: बोलो बोलो।
1: फिर तुम मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले चलो।
0: अच्छा बोलो। मगर छोड़ूंगा नहीं, ये समझ लेना। हाँ
1: भैया, आप जेल तो जाना ही पड़ेगा ना, और फिर वहाँ तेज धूप में खेतों में काम भी करना पड़ेगा।
0: तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। मगर तू बोल बोल ना, तेरी ख्वाहिश क्या है?
1: भैया, धूप में नंगे पैर चलने पर मेरे पैर तो एकदम झुलस जाएंगे।
0: तो फिर चोरी करने के लिए जूते पहनकर क्यों नहीं चलता? पर जूते पहनकर क्यों निकलता? चलने में आवाज होने लगता है।
1: मैं सच कहता हूँ भैया, आज मैं जूते पहनकर ही चोरी करने निकला था, लेकिन जब मैं तुम्हारे सेठ की दुकान में घुस रहा था तो अपना जूता बाहर ही खोल दिया था।
0: नहीं लाले की जान नहीं, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि जब चोर के पैर ही नहीं होते तो उसके जूते कहाँ होंगे?
1: भैया भैया, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा जूता वहीं छूट गया है। अब अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं अपना जूता अपने साथ ले लूँ।
0: अच्छा बेटा, हाँ, तो इतनी दूर आने के बाद तुम अपने जूते की याद आई है अब तुमको? है उल्लाले की जान, तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार चौकीदार से पाला पड़ा है। हाय देख, मैं यही खड़ा हूँ, ठीक है? तुम जूता जूता लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ,
1: ठीक है?
0: और सुनो, मैं यहीं पर खड़ा देख रहा हूँ, है उल्लाले की जान, कोई हेरा फेरी मत करना है,
1: ठीक है?
0: क्योंकि सुना है चोरी करने से जाए हेरा फेरी से न जाए।
1: बस भैया, मैं अभी गया और अभी आया, बस तुम यहीं खड़े रहो।
0: जल्दी आना है,
1: जल्दी
0: भाग के आना।
1: बाप रे, आज तू ही फिर घूम रहा है। जब आ ही गया हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही जाऊंगा।
0: डाले की जान, आज फिर आ गया ये। अच्छा वही है, उस दिन तो तूने मुझे चूने लगा ही दिया था बच्चू, मगर आज देखता हूँ कि तू कैसे भागता है। ए पकड़ा, ये लो।
1: अरे बाप रे, मर गया, बचाओ बचाओ, अब मत मारो, मर गया। अरे मर गया रे,
0: कहाँ बेटा? अरे ये ले, ये बाया है, जो ये दाया है। आज देखो तो, आज देखो तो तुम हमारा पहलवान। ये ले,
1: अरे मुझे मत मारो, अब मत मारो मुझे। अरे मैं नहीं भागूंगा, उस दिन गलती हो गई थी भैया।
0: लाला की जान, भागेगा कैसे रे? अब चल चुपचाप सीधी तरह से सेठ के पास।
1: चलता हूँ, आज तो भागने का सवाल नहीं पैदा होता। अरे अरे भैया, मेरे जैसा चोर बार बार अपनी ईमानदारी थोड़े ही बेचता। अरे मर गया रे,
0: चलो चलो।
1: अरे बाप रे, अरे अरे मर गया भैया, जरा जरा एक मिनट रुको।
0: नहीं नहीं, ओए नहीं रुक सकता हूँ, आज हम कुछ सुनने वाले नहीं है। उस दिन तुम्हारी वजह से हमको सेठ के सामने बहुत शर्मिंदा।

0: हो ना, पर आखिर में सेठ का नमक खाता है ओए। ओरे बाप रे, ओ हमारा पैर ओए।
1: क्या हुआ चौकीदार भैया?
0: अरे होने क्या है रे, हमारे पैर में लगता है कि कांटा चुभ गया है।
1: ये तो गजब हो गया। लाओ मैं निकाल दूं, जरा मेरा हाथ छोड़।
0: नहीं हो नहीं, ओए चाहे ऐसे से चार कांटे और चुभ जाए तो भी लाला की जान हम नहीं छोड़ेगा। मगर हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ओए
1: क्या भैया, ठीक है, मेरे लिए क्यों कष्ट झेलते हो, खुद ही निकाल लो।
0: अरे बहुत गहरा चुभ गया रे, ये निकाल दिया।
1: चौकीदार भैया, आज आपका जूता कहाँ है?
0: अरे तुझे पकड़ने के लिए उसे उतार दिया तेरी, ओ यही कहीं दुकान में रह गया है।
1: ये मारा चूना लगा के। तो भैया अब क्या नंगे पैर ही चलोगे?
2: आगे तो और भी कांटा चुभ सकता है, अंधेरे में तो कांच के टुकड़े भी गड़ सकते हैं, और कभी कभी तो पैर कट भी जाता है।
0: अच्छा?
2: और जख्म होने से पैर सड़ भी जाता है।
0: अरे बहुदा, अरे हमारे बाप, अब क्या होगा रे? इसका मतलब जूते के बिना आगे आगे चलना ठीक नहीं है।
1: सोच लो भैया, मैं तो आपके जाल में फंसी चुका हूँ, अब आपको जो अच्छा लगे सो करो।
0: ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन बरखुदर तुझा खड़े ही ना, वही खड़ा रहे। मैं भाग कर दुकान के पास से अपना जूता लेकर आती है।
1: ठीक है भैया, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अरे भैया टस से मत नहीं होगा, भागना तो दूर रहा, तुम जल्दी जाओ।
0: ठीक है ओए, भागना मत, हमारा इज्जत का सवाल है, हमारी नौकरी का सवाल है, और देखो लाला की जान हमारे नंगे पैर का सवाल है। भागने मत,
1: नहीं
0: भागना, हम अभी आए।
1: नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, अरे नहीं भागूंगा, तुम जाओ तो सही। और अब मैं भी जाता हूँ चूना लगा के।

उत्तर जूते का। अभी आपने अजीत कुमार शर्मा की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल फिल्म के गाने से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत प्रीतम का। अच्छा।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए टोची रैना और रेखा भारद्वाज को फिल्म ये जवानी है दीवानी में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बार बार देखो। अभी आपने इस फिल्म में अमर ऋषि बादशाह और नेहा कक्कर को सुना। संगीत जसलीन रॉयल का था, बोल अमरीक सिंह और कुमार के।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रहे।

चितलोक कार्यक्रम में अब सुनिए बादशाह फजील पुरिया और सुकृतिका को फिल्म कपूर एंड सन्स में। धुन बनाई है अमाल मलिक ने, बोल लिखे हैं कुमार ने।

0: कर गई चुल।
1: अमाल मलिक के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए जिसे लिखा है मनोज मंतसर ने, आवाज पलक मच्छल की, फिल्म का नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: और ये है चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में। फिल्म का नाम है रईस। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जैम 8 ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर

0: किन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
0: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
0: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा

0: कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है।

0: इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। यह सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Centre approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: 5,660 crore rupees ka.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
2: Foreign shores tak cotton ka puri supply chain ko maintain karna.
1: The scheme aims to develop high yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests while promoting the large scale adoption of modern crop production technologies. The scheme is expected

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

25 दिसंबर सन 1919 को लखनऊ में जन्मे संगीतकार नौशाद की गिनती भारतीय सिनेमा के एक सफल और सुरीले संगीतकार के रूप में होती है। मुंबई आने से पहले नौशाद ने

0: लखनऊ में ही वाद्यों की एक दुकान पर काम किया। इसी संदर्भ में संगीतकार नौशाद के उद्गार।
1: हमारे पास बाजा वाजा तो था नहीं। अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरूस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज उस्ताद

हर किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होके घंटों क्या देखा करता है? मैं देखता हूँ कितने दिनों से तू आता है यहाँ, खड़ा रहता क्या देखा करता है? तो मैंने कहा, उस्ताद ये साज सामान जो आपके हैं, हारमोनियम, सितार, पियानो, ये सब देखा करता हूँ। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद, पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, ऐसे फरिश्ता लोग थे वो साहब वहाँ से। अच्छा बेटा, वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने, कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँ कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। कोई चीज़ें जो रात को वहाँ सुनी मैंने रॉयल सिनेमा में, तो एक रोज उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आँख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो आके पीछे बैठे अपनी मसनत पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने, अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें? आप दुकान साफ करना नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे? मैंने कहा, उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ तो नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आँखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी? मैंने कहा, हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सजा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सजा के लिए। अब मैं हुजूर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूँगा। नहीं सजा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा, जी नहीं। आपकी सजा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सजा। और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, है? और लड्डन साहब को मैं एक रोज बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो।

मुंबई में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने के लिए नौशाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी लगन, मेहनत, धैर्य और समर्पण का सकारात्मक परिणाम सामने आया। सन 1940 में नौशाद को स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का अवसर जिस फिल्म के लिए मिला वो थी प्रेम नगर।

संगीतकार नौशाद की धुनों से सजी 35 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 12 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्मों ने मनाई डायमंड जुबली।

संगीतकार नौशाद शास्त्रीय संगीत के चितेरे थे, लोक संगीत की शैलियों के भी वो मर्मज्ञ थे। नौशाद के संगीत से सजी फिल्म बैजू बावरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास का उदाहरण है। इस फिल्म के लिए नौशाद ने उस्ताद अमीर खान और पंडित डीवी पलुस्कर से पार्श्व गायन करवाया था। फिल्म बैजू बावरा के लिए नौशाद साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

फिल्म मुगले आजम की भी एक रचना भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत मिसाल है, जिसके लिए नौशाद ने शास्त्रीय संगीत के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का

सन 1952 में आई फिल्म आन। इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। महबूब साहब की इस फिल्म के लिए नौशाद साहब ने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था और उसकी रिकॉर्डिंग लंदन में हुई थी।

सन 1955 में फिल्म उड़न खटोला के एक गीत को नौशाद जी ने बिना ऑर्केस्ट्रा के रिकॉर्ड किया था और वाद्यों के स्थान पर समूह स्वरों का प्रयोग किया था।

गायक मोहम्मद रफी को पार्श्व गायन का पहला मौका नौशाद साहब ने ही दिया था, पहले एक कोरस में और फिर प्रमुख स्वर के साथ। फिल्म थी पहले आप और वो गीत था ये।

0: होगे।
1: नौशाद साहब के संगीत से सजी प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का नामांकन ऑस्कर के लिए किया गया था। इस फिल्म के सभी गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

नौशाह साहब ने डीएन मधोक, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, जिया सरहदी और खुमार बाराबंकी जैसे चर्चित गीतकारों के साथ काम किया और शायद सबसे ज्यादा गीत संगीतबद्ध किए शकील बदायूनी।

संगीतकार नौशाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित 5 फिल्मों का निर्माण किया गया। उनके संगीत और जीवन पर आधारित जो किताबें प्रकाशित हुईं, उनके नाम हैं दास्ताने नौशाद, आज गावत मन मेरो, नौशाद की कहानी, नौशाद की जुबानी और नोट्स ऑफ नौशाद।

सन 1988 में टीवी धारावाहिक अकबर द ग्रेट के लिए भी नौशाद साहब ने बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था। लंबे अंतराल के बाद नौशाद जी ने माय फ्रेंड और तेरी पायल मेरे गीत नामक फिल्मों के लिए संगीत

2005 में ताजमहल एंड इटर्नल लव स्टोरी के लिए भी नौशाद साहब ने धुनें तैयार की थी। नौशाद एक उम्दा शायर भी थे। उनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है आठवां सुर। भारतीय सिनेमा और संगीत में नौशाद साहब को उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण के अलंकरण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतीय सिने संगीत के महान कलाकार नौशाद का सुरीला संगीत आज अमूल्य धरोहर है हमारी। उनके कालजय गीत अपने सुरों से यूं ही सम्मोहित करते रहेंगे संगीत प्रेमियों को। 5 मई 2006 को संगीत का ये महान साधक इस नश्वर जगत को छोड़कर चला गया, उस सफर पर जहां से लौटकर कोई नहीं आता।

0: फनकार। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद पर केंद्रित ये कार्यक्रम। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो कहीं दूर चलें, चलें वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पल के झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठें, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे, दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। तो चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट लें, बांट लें गम, बांट लें आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट लें आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें, जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी एक दूसरे का हाथ थामकर। दिखाई दी वो तस्वीरें जब यूं ही सड़कों पर बेमकसद चले थे बहुत दूर तक, बहुत देर तक। याद आए वो पल जब यूं ही बैठे थे चुपचाप एक दूसरे के साथ। आज भी दर्ज हैं फुर्सत के वो लम्हे मन की डायरी में।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। तुम्हें ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्हें ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोल उठा था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

हम गुम हैं अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास, फिर भी है एक एहसास जैसे वो कहीं आसपास है। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

होता नहीं जैसा हम चाहते हैं, फिर भी हमारी चाहत होती है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता कि हम न लिखते अपने दिल में किसी और का नाम, काश ऐसा होता कि हम जानते हुए भी बन जाते अजनबी उनके साथ, काश ऐसा होता कि उनके मन की इबारत पढ़कर भी बने रहते अनजान।

0: के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है।